नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज की गई मेहनत ही कल के भविष्य का निर्माण करती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 290। उसके बाद 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। सुनिए इस श्रृंखला का 8वां भाग। कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत हमेरा ही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी, आलेख और स्वर है राजेश झा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षावत और राष्ट्रीय नाटक नाट्य विद्यालय यानी NSD नई दिल्ली के पूर्व निर्देशक पद्मश्री वामन केंद्री से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग है योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए सेहतनामा, बालों की समस्या और देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत MD डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति है तेजश्री कामले की। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। 7 बजे सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए एक ही फिल्म से, आज की फिल्म है आई मिलन की रात। हवा महल में सुनिए नाटिका महाकवि तुक्कड़ की सगाई, लेखन है शारदा प्रसाद मूर्शिंदे की, निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8 बजे। पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए कार्यक्रम। 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है सलमा सैयद का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। 8 प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

लंका दहन करके पवनसुत हनुमान सीता जी का समाचार लेकर समुद्र के इस पार आ चुके हैं। प्रभु से निवेदन करते हैं, हे करुणा निधि, अशोक वाटिका में सीता माता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः शीघ्र ही चलकर दुष्टों का नाश करके उन्हें ले आइए। जनक नंदिनी के क्लेश का वर्णन सुनकर श्री राम की आंखों में अश्रु उमड़ आए। बोले, मन वचन और तन से जिसे केवल मेरा ही आसरा है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हे पुत्र, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई भी देव, मनुष्य अथवा अन्य तनधारी नहीं है। मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान उनके चरणों में आ गिरते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 290।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार दास बाबू।
1: मिश्रा जी, आज फिर हम उपस्थित हुए हैं इस ताल प्रवाह में। ताल प्रवाह में चौताल, तीन ताल, आड़ा चौताल, एक ताल, बहुत ताल
2: है। बहुत ताल है, अनगिनत ताल है।
1: तो ताल है। आप हमें बताएं, आज हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल आप सुनाएंगे?
2: आज मेरी इच्छा हुई कि मैं एक ताल 12 मात्रे का होता है, हम उसकी चर्चा करें।
1: और बहुत अच्छी बात है
2: जी दास बाबू। एक ताल एक ऐसा ताल है जो बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, इसके साथ बड़ा उपयोग किया जाता है
1: जी।
2: एक ताल, तीन ताल भी बजाते हैं, बट ये जो ताल है एक ताल, तराना के साथ, विलंबित ख्याल के साथ।
1: तो मैंने तो एक बार पंडित रविशंकर जी को एक ताल में झाला भी बजाते हुए
2: हाँ जी हाँ जी करते हैं। हम सोलो भी बजाते हैं एक ताल में, उसके लिए हमें कम से कम अच्छा टाइम चाहिए। तो श्रोताओं को आज हम एक ताल के बारे में बात करते हैं। और एक ताल जब हम संगत करते हैं गायक के साथ, तो इसमें बहुत ठहराव होना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं आपको कि तबला वादक एक ऐसा साधक होना चाहिए कि उसको चारों पट का तबला आना चाहिए। गाने के साथ बैठा दीजिए तो गाने के साथ संगत होना चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठाई तो इंस्ट्रूमेंट का तबला बोलना चाहिए, नाच के साथ बजाए तो नाच वाला तबला होना चाहिए, और अगर वो सोलो बजा रहा है तबला वादक तो फिर सोलो वाला तबला होना चाहिए। तो चारों पट का तबला आना चाहिए। तो आज हम एक ताल की चर्चा करते हैं जो 12 मात्रे का होता है, उसमें 6 विभाग होते हैं।
1: इसी सिलसिले में एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, कुछ कुछ ऐसी बंदिशें भी मिलती हैं जिसमें एक ताल 3 के छंद में जाता है
2: जी,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए
2: जी। उसका जो अंदाज है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट में बज रहा है कि धिन धिन दागे तिट ता डा, तो वो 3-3 का छंद आता है। वो है वही एक ताल बजाएगा, लेकिन छंद जरा चाल उसकी दादरा की चलन हो जाती है
1: जी हाँ,
2: क्योंकि दादरा और 12 मात्रा आपस में संपर्क
1: का दूना
2: हाँ। तो हम एक ताल में 12 मात्रा होता है, उसमें 6 विभाग होते हैं, 4 ताली और 2 खाली। दूसरी बात, 12 मात्रा का एक ताल और है जिसका नाम है चार ताल, जिसे हम चौताला कहते हैं
1: जी।
2: धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तेटे का ता गदी गन धा धा,
1: पखावज में बस
2: पखावज कांग है ये
1: जी,
2: ये पखावज हाँ जी हाँ जी, ये पखावज कांग है। और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने गुरु जनों का जिन्होंने तबले को पखावज के अंदाज से भी बजाया है। तो प्रस्तुत करता हूँ एक ताल, चढ़ी हुई गति।
1: वाह।

0: श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा और ताल प्रवाह और आप, ये बनारस का जो एक अंदाज है ना दास बाबू
1: जी,
0: उसमें कवित परन, बोल परन, गज परन, कविताओं की जो रचना जो हम पढ़ते हैं कविता, वो तबले से बजा के दिखाते हैं
1: जी।
0: जैसे एक नर्तक भाव से दिखाता है
1: जी।
0: उसी हिसाब से ये हमें पूरा छूट है। तो एक पठन करता हूं, नीर तत नंद नंद छोम छ नोम तोम तत्धा दिग दिग थी लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गत त्रिभंग था खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावली दियो बोर रंग बोर बो सर बोर बोर बनवारी हारी धाति धा धाति दिंदा। अब ये जो शब्द मैंने पढ़ा है तब

0: बाजत डमरू शिव शंकर, ये पढ़ंत भी है, बाजत डमरू शिव शंकर की शोभित अंग में भभूति, गले सर्प मुंडमान तीन नत जटागंग है चक्रदार। अब ये शिव तांडव का एक अंदाज है
1: जी,
0: तो मैं इसको दो अंग से कोशिश करूंगा कि इसे अगर पार्वती करेंगे तो कैसे करेंगे और शिव करेंगे तो कैसे
1: क्या
0: करेंगे?
1: बात है,
0: तो पार्वती ये बड़ा बेस, ये तबला हो जाएगा
1: जी।
0: और बेस सुनिए श्रोता,

0: हमेशा गुरुजी बोलते थे हमारे
1: जी
0: थाप, तो एक मैंने एक अपना अपना एक अंदाज है, कत का बोल कैसे निकलेगा
1: जी।
0: मेरे गुरुजी मदन मिश्रा और हमारे शंभुनाथ मिश्रा जी ने बताया कि

बड़ा सुंदर अंदाज है। कैसे बोल निकलेगा।

0: ये एक ताल हो गया
1: जी,
0: इसको पखावज के अंदाज से कैसे लेंगे
1: जी?
0: क्योंकि कुछ कलाकार भारत में ऐसे हुए हैं जिनके साथ हमने बहुत अच्छा काम किया है, पंडित अर्जुन सहजवाल
1: जी
0: पखावज, पंडित रामदास जी पखावज, पंडित भवानी शंकर
1: जी,
0: तो ऐसे लोगों के साथ मुझे

0: एक ताल बजाते बजाते मुझे बड़ा सुंदर गाना याद आ गया।
1: क्या बात?
0: आपको खुद पता है, वाह वाह फारूक भाई, कि फिल्मी जो गाने पहले बजाए जाते थे, अभी तो काफ़ी चेंज हो गया, वरना हमेशा क्लासिकल बेस को लेके गाना बजाना ये सब होता था। तो मुझे गाना याद आया, लता दीदी गाई हैं उसमें, खास एक ताल उसमें बजा है
2: जी,
0: आपको याद है, शंकर जय किशन जी का म्यूजिक है उसमें, मन मोहना बड़े झूठे।
1: क्या कहना,

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी 8वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

नमस्कार। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गाना सुनते हैं सम्राट चंद्रगुप्त। इस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में भारत व्यास के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
5: मिलो जो तुझे बताए।
4: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
6: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
4: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
7: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया मैं।
8: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं छलिया फिल्म से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल, और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: हेमंत कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे सट्टा बाजार। इस फिल्म से एक गाना, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए संतराल के बाद।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बेदर्द ज़माना क्या जाने। इस फिल्म का ये गाना भरत व्यास के बोल, संगीत कल्याण जी वीर जी शाह का। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मदारी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में पीएल संतोषी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेमंत कुमार और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे चंद्रसेना, इस फिल्म से गाना बोल पंडित मधुर के, संगीत कल्याण जी वीर जी शाह का। आइए सुनते हैं एक जरूरी सूचना।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम् एक जय घोष। वंदे मातरम् एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम् एक जय घोष।
0: आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे कसौटी फिल्म से गाना कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे हाथ की सफाई। इस फिल्म से गाना गुलशन बावरा के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

मेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं कहीं प्यार ना हो जाए इस फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: नियंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45
1: पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले। इस फिल्म से ये गाना आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

दिल भी तेरा हम भी तेरे, इस फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में गाना। शमीम जयपुर की, माफ कीजिएगा शमीम जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
5: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन

0: श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: हर हर महादेव।
2: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, भारतीय नारी के 16 श्रृंगारों में पायल यानी पाजेब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कविगण नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन में पायल का वर्णन आलंकारिक और कोमल कांत शब्दावली में करते हैं। पायल की झनकार न सिर्फ वातावरण को अनुरागमय कर देती है, बल्कि मधुरता और स्नेह से भर देती है।
1: हमसे

0: भारतीय संस्कृति में पायल की रुझुन ध्वनि में नारी के सौंदर्य के साथ उसकी सरलता, लज्जा और गरिमा का भी समन्वय दिखाई देता है। पायल की मधुर झनकार प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं को मर्यादित रूप में अभिव्यक्त करती है। नायिका के चरणों की गति की तीव्रता से आंदोलित होती पायल प्रिय मिलन की आशा तो जगाती है, किंतु लोकलाज से विचलित भी करती है। ऐसी भावना तो ब्रजवासिनी राधा के मन में भी उठती होगी।
1: झन झन।

0: पायल की छम छम वातावरण में ऐसी मधुरता भर देती है मानो प्रकृति भी स्वयं उस सौंदर्य का स्वागत कर रही हो। बिना कुछ बोले पायल की झंकार ही प्रियतम को अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। पायल की रुनझुन हृदय से हृदय के बीच का पत्राचार ही तो है।
1: छम छम।

पायल नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पायल सौंदर्य और प्रेम को कलात्मक एवं सौम्य रूप में अभिव्यक्त करता है। तभी तो कवियों ने इसकी रुंझुन की तुलना वीणा के मधुर तानों से की है और इसे हृदय की मौन भाषा की भी संज्ञा दी है। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे

जिंदगी के हर एक पल को साहस के साथ, एक फ्री स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट करना सिखाता है ये गाना। हाईवे फिल्म से आप सुन रहे थे। इस गाने को गाया है नूरन सिस्टर्स, यानी सुल्ताना नूरन और ज्योति नूरन ने। इस गाने को लिखा इरशाद कामिल ने और इसका संगीत तैयार किया।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के

0: पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना एक मैं और एक तू इस फिल्म से। बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

जानिए इस मेलोडियस आवाज के पीछे की बातें, कुछ और करीब से जानिए दीपाली सहाय को 12 सितंबर से बॉम्बे टॉकीज में। तुम्हारी सुलु इस फिल्म से आप सुन रहे हैं ये गाना रोंकिनी गुप्ता की आवाज में। इसके लिरिक्स और म्यूजिक है शांतनु घाटक का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आई हेट लव स्टोरीज, आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये गाना विशाल ददलानी की आवाज में, अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता थिएटर

0: आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अलीशा फिल्म से आप सुन रहे थे अनुष्का मनचंदा, न्यूमन पिंटो की आवाज में गाना जावेद अख्तर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा की आवाज में लक बाय चांस इस फिल्म से एक गाना, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान, लॉय का म्यूजिक।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर।

0: शिकार।
1: दोस्तों आनंद जी का जन्म 1932 में आज ही के दिन यानी 2 मार्च को हुआ है कच्छ भूज के गांव कुंडरोडी में। वैसे दोस्तों संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी एक रूप हैं, तो केवल आनंद जी की बात नहीं होगी, साथ ही साथ कल्याण जी की भी बात होगी। कल्याण जी आनंद जी फिल्म संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे हम कह सकते हैं दो जिस्म एक जान। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कल्याण जी और आनंद जी दो भाइयों के नाम हैं, पर वो यूं याद किए जाते हैं मानो

0: चे।
1: वैसे वो दौर जुड़ीदार संगीतकारों का नहीं था, केवल शंकर जयकिशन ही एक नामी गिरामी जोड़ी उस दौर में थी। बाकी सारे संगीतकार जो थे, जो टॉप के संगीतकार थे, वो सब अकेले ही अपने संगीत का काम किया करते थे। हाँ, ये बात और है कि उनके साथ होते थे असिस्टेंट्स, अरेंजर्स वगैरह, पर कल्याण जी आनंद जी वो पहली जोड़ी थी जिसने ऐसे जोड़ीदार संगीतकारों के लिए राहें रोशन की।

दोस्तों, संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पहले जो जोड़ी लोकप्रिय थी वो थी शंकर जयकिशन की। इनके अलावा इनके भी पहले जो संगीतकार जोड़ी थी वो पंडित हुसनलाल और पंडित भगत राम की। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, पहले कल्याण जी वीर जी शाह इस नाम से कल्याण जी भाई संगीत दिया करते थे। कल्याण जी का जन्म कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी में 30 जून 1928 को हुआ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत सफर शुरू हुआ है मुंबई के गिरगांव से, जहां उनके पिता वीर जी भाई शाह कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी से आकर मुंबई के गिरगांव इलाके में किराना माल की दुकान चलाया करते थे। उनके एक ग्राहक ऐसे थे जो संगीत के मर्मज्ञ थे, उन्हीं से कल्याण जी भाई ने प्रथम संगीत की दीक्षा ग्रहण की। वही बात आनंद जी के साथ भी हुई, दोनों ही भाई एक ही गुरु से संगीत की शिक्षा पाते रहे। दोस्तों, मुंबई वैसे ही कला नगरी है और गिरगांव में संगीत की जानकारी रखने वाले कई माहिर उस दौर में रहा करते थे। एक जगह से थोड़ी ही दूरी पर संगीत का एक जाना माना घराना भी था, भेंडी बाजार घराना। कई संगीतकार यहाँ रहा करते थे, स्नेहल भाटकर, दत्ताराम वाडकर, ये नाम उल्लेखनीय हैं। तो कल्याण जी ने संगीत में करियर करने की ठान ली। शुरुआत के दौर में बतौर सपोर्टिंग संगीतकार वो काम करते रहे। अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार के लिए फिल्म नागिन में उन्होंने क्ले वायलिन पर जो धुन बजाई, जिससे उनका नाम सबकी जुबान पर आ गया।

0: कल्याण जी भाई ने इसी दौरान कल्याण जी, वीर जी और पार्टी नामक एक सांगीतिक ग्रुप भी बनाया था, जो संगीत का जीवंत शो यानी लाइव ऑर्केस्ट्रा किया करता था। ये इस प्रकार का पहला लाइव म्यूजिकल शो हुआ करता था। आनंद जी भाई जब विविध भारती के स्टूडियो पधारे थे तो उन्होंने जो बातें कही थी, सुनते हैं उन्हीं से उनके अपने विचार।
1: हर सिचुएशन जो है गाने की, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कोई तो होगा। तो गिरगांव में हम रहते थे तो दत्तवन गुजराती लोग बनिए जो हैं वो दत्तवन करते हैं, तो दत्तवन लेने के लिए पिताजी ने मुझे भेजा। ये होता था कि दत्तवन जो अच्छे ले आता तो समझदार लड़का है, तो ये एक एग्जांपल होता था। तो दत्तवन लेने को भेजा मुझे, तो वहाँ पे दत्तवन काटने वाली लड़की जो है दत्तवन काट रही थी और उसके बीच में जो जहाँ पे ये होते हैं ना गठान, उनको काट के फेंक देती है। तो बैठे बैठे वो सामने वाले लड़के को मार रही थी, तो उसने भी फिर चिल्ला के बोला, ए क्या कर रही है तू, ये कर रही है। तो उसने बोला कि तेरे को मैं थोड़ी मना किया, तू भी मारना। तो एक मुखड़ा आ गया कि भाई देखो ये एंगल रोमांस का ये भी है, तो उसका भी उस भाषा में तो लिख नहीं सकते, तो कंकरिया हमारे करके इशारे यूं करके रख दिया था कि भाई इसको कहीं आएगा तो बोलेंगे कि भाई डाल दो। जहाँ पे वो सिचुएशन आई कि मटके लेके निकल रही, तो मैं बोला ये ऐसे कोई डाल दो कि मटकी के साथ लिंक आ जाए, तो हमने बोला ये करो, तो वो गाना उसमें डाल दिया।

मेरे देश की धरती की इस देश की धरती, पहले लिखा गया था कि इस देश की धरती सोना उगले उगले ही थी मिरती। तो मैं बोला एक तो उगले सब समझेंगे नहीं, तो बोले नहीं वहाँ तो समझते हैं उगले, आपके वहाँ उगले नहीं समझते होंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं बोला जो आसान तरीका है, इस गाने में बंद हो जाता है और मेरे अपना लगता है, अपनेपन का एहसास होता है। तो इस पर बहस चल रही थी कि इस रखें कि मेरे रखें। तो इतने उसमें 4-5 दिन जब भी सिटिंग होती थी कि भाई क्या रखें, मेरे रखें कि इस रखें, इस रखें कि मेरे रखें, यूँ करते करते आखिर में मेरे देश की धरती और ये गाने ने

0: यहाँ तक कल्याण जी भाई के साथ बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे आनंद जी भाई, पर जब इन्हें फिल्म सट्टा बाजार मिली तो पहली बार संगीतकार के रूप में पर्दे पर नाम उभरा कल्याण जी आनंद जी। इस जोड़ी के लिए और संगीत के चाहने वालों के लिए ये फिल्म एक यादगार फिल्म है। कल्याण जी आनंद जी को एक के बाद एक तीन फिल्में मिली जिनका संगीत लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। 1959 में मदारी और सट्टा बाजार।
1: तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा

1961 में आई थी फिल्म छलिया। फिल्म छलिया का निर्माण किया था सुभाष देसाई ने और इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। राज कपूर और नूतन की इसमें जोड़ी थी। छलिया में

0: दोनों ही फिल्मों का संगीत जबरदस्त हिट रहा और कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी का शुमार अव्वल दर्जे के संगीतकारों में होने लगा। इस जोड़ी ने फिल्म संगीत में जो वैरायटी दी है वो कमाल की है। देशभक्ति के जज्बे से लबरेज उपकार फिल्म का ये गाना देश गान के रूप में जैसे पूजा जाता है।
1: बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं,

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुल 250 के आसपास फिल्मों में संगीत दिया है दोस्तों, जिनमें से 17 फिल्में गोल्डन जुबली हिट हुई हैं और 39 फिल्में सिल्वर जुबली। मानवीय भावों को सशक्त रूप से अपनी रचनाओं में पिरोना बड़ा ही कठिन काम होता है। इसके लिए उच्च कोटि की सांगीतिक बुद्धि की तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही अथक परिश्रम की भी जरूरत होती है, तब कहीं जाकर कोई रचना संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। मुकेश के गाए कितने ही गमगीन गाने संगीत की महफिलों में आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं।

लता मंगेशकर के लिए कल्याण जी आनंद जी ने 297 गाने बनाए हैं। दोस्तों, इसी संगीतकार द्वारा लता जी के लिए कंपोज करने का एक तरह का जो रिकॉर्ड है, ऐसा करने वालों में उनका नाम तीसरे नंबर।

24 अगस्त सन 2000 में कल्याण जी भाई ने संगीत संसार को अलविदा कहा तो लगा जैसे भरी महफिल में कोई उठ के चला गया।

कल्याण जी भाई का जो सपना था नए उभरते कलाकारों को आगे बढ़ाने का, उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने में लगे हैं उनके अनुज आनंद जी भाई। उनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम है लिटिल स्टार्स। दोस्तों, इस महान संगीतकार जोड़ी ने हमेशा ही सामाजिक सरोकार को प्रधानता दी है। कई एनजीओज के लिए चैरिटेबल शोज करना, समाज के लिए कुछ करते रहने की एक परंपरा सी इन्होंने चला रखी है। सामाजिक दायित्व को अपना उत्तरदायित्व मानते हुए आनंद जी भाई अथक प्रयास से अपने इस कार्य को कर रहे हैं। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत सुर सागर है और इसमें से एक अंजुली भर के ही इस छोटे से कार्यक्रम में हम पेश कर सकते हैं। तो इनके इस लंबे सफर को आधे घंटे में पूरा करना, ये एक असंभव सी बात है। हमारा ये एक छोटा सा प्रयास।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है। ऐसी

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूं तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ, सब कुछ खिलाफ विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना।

0: ना, ये बात।
1: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं।
0: जी जी,
1: पर मुझे तो वहीं जाना था, तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है, तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
0: वाह वाह वाह।
1: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था, तो मैं इतना सा छोटा नाटा था, तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ। और आप जवाबदेह है, उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
0: जी।
1: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था, और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो, अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए, और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए, और काम करने का मादा होना चाहिए।
0: क्या बात है। छोटे कद के, हल्की सी दाढ़ी वाले, दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां के शुरुआती दिन कैसे थे?
1: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ, एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
0: जी।
1: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा, वो होगा, वो वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, 1+1 का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा 1-1 एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनी आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
0: जी।
1: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूँ, और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
0: जी।
1: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है?
0: वाह,
1: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी, सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के, लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
0: जी।
1: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे? तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई, और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे का स्वागत आगत। तो वहां रख के मैं चला गया, तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
0: ओके।
1: और उनका नाम था अनामिका हक्सर।
0: ओ हो हो हो हो, घोड़े को जलेबी खिलाना जिन्होंने आगे चल के फिल्म
1: मेरी क्लासमेट जो पीएन हक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, इलीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
0: वाह वाह।
1: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से, उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
0: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग?
1: नहीं नहीं वो नहीं, उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों भी, दोनों तीनों भी।
0: अच्छा ठीक है,
1: और ये मुंबई में ही रहती है।
0: चलिए हम लोग अंदाजा लगा
1: लेंगे।
0: यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली। पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
2: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
2: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
2: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं?
2: जी,
1: तो इसीलिए मैंने मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई आमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर

0: डांस कर रहे हो। इस तरीके से ये था, किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे हैं। उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, एक महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की, क्या कहते हैं, एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो
1: अद्भुत।
0: इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया एक महीने के अंदर।
1: वाह।
0: तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले,
1: जी
0: और कारंजी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे, वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
1: वाह
0: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड कई ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहाँ आना हुआ। और सौभाग्य से कारंजी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आई, तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया। तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्य शास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है। उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का,
1: जी
0: वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं। फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के, जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग, उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे, जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर, थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारंजी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह।
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल

0: थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे। तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक,
1: बिल्कुल।
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपेट्री कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपेट्री क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद,
1: जी
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: पचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर देख के चल।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक के करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है। अभी सीनियर बैच में देखिए, आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे। जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहां आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा, जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल, उन्होंने
0: उनकी
1: लिखी
0: नेशनल
1: हुई
0: अवार्ड विनिंग फिल्म
1: और
0: है।
1: उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज मोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है। वो हिमानी शिवपुरी है,
0: वाह,
1: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय, जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं। सुंदरशी है वहां, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राज किरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम
0: बिल्कुल।
1: कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं, जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था उड़ीसा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे, उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से।
0: जी
1: मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए,
0: जी
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का यह कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूं।
0: जी
1: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही,
0: जी
1: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही, कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टीवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह हैं। एक्टर होता मैं, बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है,
0: जी
1: किसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था, कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंज वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
0: जी,
1: या गजब तिची आधा मराठी में
0: जी,
1: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
0: जी,
1: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
0: वाह वाह, क्या बात।
1: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
0: ये बात
1: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है,
0: उसी में करना है,
1: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के, वो केशरभाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
0: गजब।
1: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
0: अच्छा।
1: हमने अपने 24-25 लोग थे, तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
0: अरे बाप रे।
1: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं है,
0: एक्स्ट्रा थे
1: ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में किया,
0: बहुत इंटेंस नाटक
1: है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
0: ओके, ये वो पॉइंट,
1: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है, और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक्थ नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक्थ के, वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक्थ को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक्थ, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
0: क्या बात,
1: हमने करिए। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रजमोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
0: वाह।
1: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह, उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
0: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव।
1: और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लेगा आई शुड बी द डायरेक्टर।
0: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण
1: जी
0: पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
1: यस
0: चेंज की।
1: मतलब दो तीन चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया,
0: जी
1: दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
0: यस
1: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया
0: क्या बात है।
1: जो
0: यह
1: मुझे अंदर से नहीं लगा।
0: जी, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल
1: बिल्कुल
0: है।
1: दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे। केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने दो चॉइस थे।
0: एक तो
1: जैसे
0: आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना
1: नहीं,
0: है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा, फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपर्टरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते
1: अलग
0: खुले।
1: दोनों भी दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है? आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की? बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले, इज अ
0: जी
1: प्ले राइट एंड
0: बिल्कुल
1: नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब।
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड
1: सोचने
0: की
1: की। हाँ,
0: चमक
1: एक
0: दमक
1: एक
0: दिख रही
1: तरफ
0: है।
1: इंटरनेशनल, तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी का या एक या दो डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रैना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अहलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
0: बाप रे।
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा,
0: गजब।
1: केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
0: गजब।
1: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में। तो ये एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको

0: सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था,
1: जी
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
1: हाँ
0: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके, वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया,
1: जी
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है,
1: हाँ
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम,
1: अच्छा
0: दैवम मतलब देव,
1: जी
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है,
1: जी जी जी
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम, तैयम का मतलब है देव,
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है,
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता कि
1: कि कौन है,
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहा है और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है, उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती,
1: इतना बड़ा है वो।
0: इतना ऊंचा है। और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दुधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर
1: जी
0: उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: बत्तीस
1: रे।
0: बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है। और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां,
1: वाह,
0: जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हैं, वो भगवान को देखने आए हैं,
1: आस्था है
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है,
1: जी।
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी।
0: अंदर, कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि
1: जी
0: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है। ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर।
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की है, विजुअल्स वहां के है, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व थिंग।
1: जी
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने ये सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया, या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं, हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरह

0: का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, उस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मोमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: रंग तरंग
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। 100 बार कहा आंखों ने यही अफसाना, दिल जाने तमन्ना आपका है दीवाना। श्रोताओं, कार्यक्रम रंग तरंग की शुरुआत कर रहे हैं इस गैर फिल्मी गीत के साथ। आवाजें हैं पीनाज मसानी और भूपेंद्र सिंह की। गीत है नक्श लायल पुरी का, संगीत है जयदेव का, एल्बम का नाम है आई तेरी याद।

अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। कलाम है शायर डॉक्टर राही मासूम रजा का, आवाजें हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम जेलानी का कलाम। मौसिकी तरतीब दी है गुलाम अली ने। एल्बम का नाम है मीराज-ए-गज़ल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक और एक प्राध्यापक।

0: क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिए। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का और एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: Caramba.
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अलीशा चिनॉय की आवाज में नितिन रायकवार का लिखा गैर फिल्मी पॉप गीत सुनिए। इसे सुरों में ढाला है संदीप चौटा ने।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है ललित सेन का, एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है दिलीप वर्मन का, एल्बम का नाम है रात।

सौ खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में। राजकुमार रिजवी और इंद्राणी रिजवी की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं शायर बशीर बद्र की एक खूबसूरत गज़ल, संगीत है कमलकांत का।

कार्यक्रम रंग तरंग की अगली और अंतिम पेशकश है तलत अजीज की आवाज में। शायर हैं इब्राहिम अश्क, धुन है फिदा हुसैन की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: आइए अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो, कुछ
0: यात्रा पर हैं।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
0: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोध की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
2: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
2: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
2: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं के, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
2: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
2: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
3: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
4: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
3: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
4: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
3: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
4: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
3: कैसे बना हिमालय।
4: आज रिद्धि,
3: नव्या
4: और रिदित
3: सब बहुत खुश है
4: क्योंकि उनका परिवार
3: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
5: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
6: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
5: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
6: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
5: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
6: बहुत मजा आएगा।
4: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
3: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
4: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
3: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
4: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
3: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
5: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
4: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
5: क्या 20 करोड़ साल?
4: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
5: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
4: नव्या अभी थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
6: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
5: रुको, मैं बताती हूँ।
4: तुम बताओ।
5: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
4: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
5: टैथिस महासागर।
4: वाह,
5: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
4: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
5: अलग होकर खिसकने लगे?
4: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
5: सर, पर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
4: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
6: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
5: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
4: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
6: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
5: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
4: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
5: जी।
4: देखो विशाल और शांत महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
5: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
4: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गई।
5: अच्छा?
4: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
6: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
4: हाँ बेटा क्यों नहीं।
6: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
4: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
5: अब समझ आया।

0: अब वहाँ आज हमारा हिमालय है।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
1: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
1: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनिंकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: मार्वेलस।
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ये किस तरह की मूर्ति है?
7: ऐसी मूर्ति तो मैंने।
8: वाओ, वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भलाई कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
9: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
6: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
10: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
2: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
4: ग्रेट, मार्वेलस।
6: हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है।
4: वंडरफुल।
11: हाँ हाँ
8: हम सहमत हैं।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
10: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
2: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
3: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
2: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
3: कहीं ऐसा ना हो कि
2: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशमत ने, फिल्म का नाम है कोरा का।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कलाकार, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: सुनहरे खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

धर्मात्मा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदीवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है वो पढ़ के सुना देते हैं, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। आपने उसे पढ़ा भी है, बहुत सारी बातें आपने हमारे विषय के संदर्भ में लिखी है। पहले आपको इबारत पढ़ के सुना देते हैं। इबारत ये है कि एक सवाल एक जवाब, हर सवाल के जवाब से उठता है एक सवाल और चलता रहता है ये सवालों का सिलसिला। दुनिया जब सवाल करती है तो लगता है क्या जवाब दें, दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे कहा, अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगे? उसने कहा, मैं तुम्ही से पूछती हूं कि कौन हो तुम, कौन हो, ख्वाब हो या हकीकत हो। सवालों का सिलसिला एक जगह आकर ठहर जाता है, पर तभी उसने चांद से पूछ लिया, तुम छुपे हो कहाँ? चांद ने कहा, ये तो कहो कौन हो तुम। सवाल का जवाब मालूम ना हो तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो है, तभी तो हम कहते हैं ये दिल की बाजी है, हम जीत ही लेंगे, खेल को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सत्यता तो ये है कि ये सवाल और ये जवाब एक मरीचिका की तरह हमारे मन में बने रहने चाहिए। तो दिन में 1 बजे यानी कि इस वक्त अभी थोड़ी देर में सवालों का जो जवाब है वो आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। एक हमारी साथी की ये बात की कि मन में छिपे सवालों को न पूछने से असमंजस और गलतफहमियां बढ़ती हैं, जिससे मन अशांत रहता है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। खुलकर बात करने से स्पष्टता आती है, मन का बोझ कम होता है और आपसी विश्वास मजबूत होता है। संवाद न करने से, बातों को मन में रखने से दूसरों के इरादों को लेकर गलत राय बन जाती है। सही समय पर सवाल पूछने से भ्रम दूर हो जाते हैं। पारदर्शिता से रिश्तों में अपनापन और नज़दीकियां बढ़ती है। छोटे बच्चे कुछ सवाल कौतूहलवश या जिज्ञासा के लिए करते हैं। सही समय पर बच्चों को सही सवाल का जवाब देना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात हमारे इन साथी ने लिखी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों ने अगर कोई सवाल किया तो हमें लगता है बच्चों की बातों का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बहुत सारी बातों को उस वक्त सीख रहा होता है, और यही कारण होता है कि उसके मन में सवालों का एक उबाल सा होता है। अगर उन सवालों का सही जवाब ना मिले तो बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इसलिए बच्चों के सवालों का सही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम गीत सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गीत है ये ससुराल फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, संगीत शंकर जयकिशन का है। गीतकार कौन है ये आप बताइए हमें।

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है जो जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है। और अब हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किसी से कोई सवाल किया है और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब ही तो ज़िंदगी की आधी उलझन और आधा सुकून है। सवाल तलाश की आग है और जवाब उस आग पर ठहरा हुआ पानी है। हमें कभी कभी लगता है सवाल यानी मृग तृष्णा है, मगर वो भी तो एक दृष्टि भ्रम है। सवाल ही तो जिज्ञासा या मनुष्य की चेतना बढ़ाता है। जवाब यानी अनुभूति उस पर गहरी शांति देकर सवाल को जीत लेता है। जीवन का सफर यूं ही चलता रहे, यही रूह का असली बहाव है। और एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता। एक गाना भी है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता मेरे प्यार का हिसाब, इस तरह के एक गाने का इन्होंने जिक्र किया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज की इबारत ने हमारा दिल छू लिया। सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, पर हम भी कहते हैं कि दिल की बाजी है, जीत ही लेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहू बेगम फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। लता जी की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। संगीत किसका है ये बताइए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतजार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाज़ हेमंत कुमार की, कैफी आजमी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। हमने आपसे पूछा कि क्या किसी से आपने कोई सवाल किया और अभी तक आप उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई आप व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिनके जवाब देने का जो अंदाज

धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया ये गाना, एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए। सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आंखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो, तब इंसान अपने को बहुत असहज महसूस करता है। लोग अक्सर अपने उत्सुकता या नियंत्रण की चाहत में सीमाओं को भूल जाते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और कोई जरूरी भी नहीं कि हर कोई आपके सवाल के लिए तैयार बैठा हो। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब की इस पहेली ने मुझे मेरी बेटी की याद आई। अभी वह 2 साल की है और 15 अगस्त को उसका बर्थडे था। वो मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती है कि इसका जवाब नहीं दे पाता हूं मैं। कभी कभी जवाब

भी पाता हूँ। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। मेरे पापा रात को सोए और सुबह जागे ही नहीं, ये सवाल हम पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। शिकारी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है और अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गाना।

फारूक कैसर का लिखा और जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रही है कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलटकर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी? एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी? प्रश्नों का ये भंवर थमता ही नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, कमज़ोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था, जिसका जवाब आज तक नहीं

नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशी पत्र का हवाला दिया तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं। आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है। ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका। और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, जहाँ निसार अख्तर के बोल एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है। तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज़ दिन में कम से कम 5, 6, 10 दफ़े बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फिलहाल बादलों का कब्जा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है, जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल पर चुप रहना जरूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी खत्म नहीं होते, एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम बाहर उत्तर खोजते हैं जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर, किसी का सवाल सुनकर, पर

ही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज़्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं, अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियां आ जाती है। तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब तीन देवियां फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला जिंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाज़ा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूँ तक पहुँचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों की बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मन्ना डे और आशा भोंसले की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, सी रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हो जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है। ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन, पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है। इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहां कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ से, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम, इस फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत खय्याम का। एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखते हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए, और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, भारतीय नारी के 16 श्रृंगारों में पायल यानी पाजेब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कविगण नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन में पायल का वर्णन आलंकारिक और कोमल कांत शब्दावली में करते हैं। पायल की झनकार न सिर्फ वातावरण को अनुरागमय कर देती है, बल्कि मधुरता और स्नेह से भर देती है।
1: हमसे

0: भारतीय संस्कृति में पायल की रुझुन ध्वनि में नारी के सौंदर्य के साथ उसकी सरलता, लज्जा और गरिमा का भी समन्वय दिखाई देता है। पायल की मधुर झनकार प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं को मर्यादित रूप में अभिव्यक्त करती है। नायिका के चरणों की गति की तीव्रता से आंदोलित होती पायल प्रिय मिलन की आशा तो जगाती है, किंतु लोकलाज से विचलित भी करती है। ऐसी भावना तो ब्रजवासिनी राधा के मन में भी उठती होगी।
1: झन झन।

0: पायल की छम छम वातावरण में ऐसी मधुरता भर देती है मानो प्रकृति भी स्वयं उस सौंदर्य का स्वागत कर रही हो। बिना कुछ बोले पायल की झंकार ही प्रियतम को अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। पायल की रुनझुन हृदय से हृदय के बीच का पत्राचार ही तो है।
1: छम

पायल नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पायल सौंदर्य और प्रेम को कलात्मक एवं सौम्य रूप में अभिव्यक्त करता है। तभी तो कवियों ने इसकी रुंझुन की तुलना वीणा के मधुर तानों से की है और इसे हृदय की मौन भाषा की भी संज्ञा दी है। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन की डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
2: ओनली टू रिफ्लेक्ट दैट अ वाइड डाइवर्सिटी जॉइन दिस डेलीगेशन।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, on farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवर

0: फ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
2: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
3: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडे इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है

0: जिया मोरा नाचे ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे
1: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में गीतकार है हसरत जयपुरी संगीत है सचिन देव बर्मन का फिल्म का नाम है जिद्दी

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने, धुन है जीएस कोहली की, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है शिकारी।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अगले गीत में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, तर्ज है रवि की, फिल्म का नाम है शहनाई।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खय्याम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

0: क्या करे क्या करे क्या करे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का
1: नमस्कार।
2: चंचल जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं
2: और
1: ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती हैं तो अच्छा लगता है कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है। और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमने हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है। इसे डरना नहीं है और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे, लेकिन
1: और
2: फिलहाल
1: हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
2: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट,
1: इसका पहला भाग।
2: जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है। और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना, तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की,
2: जी
1: रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
2: बिल्कुल, और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा
1: जी,
2: भी कर ली है।
1: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये है पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं उनकी बात।
2: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है, रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
2: अच्छा,
1: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहां उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब भी मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
2: बड़ा मुलायम मुलायम सा और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और खा लीजिए।
1: मिठास लेनी है आपको, लगता है कि भाई इन इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
2: बिल्कुल।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम
1: हाँ
0: में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
4: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड तीन रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
5: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
4: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हां।
5: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
4: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
5: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
4: और

0: माँ कीजिएगा। मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं
0: जी।
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा,
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
0: क्या?
1: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
0: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? खैर, 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृत वाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी?
1: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: हाँ बोलिए।
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
0: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन

0: के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी
0: जी
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
0: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है, राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी,

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपनी मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए, और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया।
2: ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है। और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे
1: छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
2: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
1: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को मुश्किल
2: और बड़ा बना लेते हैं,
1: बड़ा बना देते
2: और बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा।
1: तो हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है, ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
2: बिल्कुल, और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
1: बिल्कुल,
2: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता
1: और
2: है।
1: और कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्द पूर्ण व्यवहार हैं आपके, चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने

0: की बात कहिए, और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है, क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं मैं हूं ना साथ में,
1: बिल्कुल
0: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: हमें संबल देता है और
0: जी
1: हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा।
0: जी
1: और घबराने के बजाय थोड़ी सी जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाएं और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर मुश्किल के बाद दो चीज़ें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और
0: बिल्कुल
1: इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे,
0: जी
1: लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम 1 दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते हैं,
0: हाँ
1: आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीजों का असर कम होगा।
0: बिल्कुल कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: और खता
1: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने हैं।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ये पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है। निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
1: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं
0: बिल्कुल, महान व्यक्ति
1: उन्होंने,
0: जो हुए हैं
1: हाँ,
0: उनके बारे
1: उन्होंने
0: में।
1: सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया, तभी वो सफल हो सके।
0: हाँ, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
1: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे ना हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, रहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो
1: जी,
0: इस तरह की बातें कहकर हमारे हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे, लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत
1: जी
0: सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा
1: बिल्कुल,
0: कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हम साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें। सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं। बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं। और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी

0: रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे कहने श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी, नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है तो
1: जरा
0: भी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धुरत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
1: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ। तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है ये माध्यम से।
0: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल इसमें, ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
1: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
0: लेकिन बतौर विशेषज्ञ आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
1: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो इस पर से आप समझ
0: ज्यादा है।
1: यस
0: जी जी।
1: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को। तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटिक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है। इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
1: हाँ,
0: पर थोड़ा संभाल के।
1: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा
0: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
1: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
0: जी,
1: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
0: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
1: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
0: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
1: बिल्कुल
0: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए
0: हम सब उस्ताद हैं। फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं।
1: हाँ।
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग. आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है. मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है. और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है. और जब बाल में टक्कल, बालनेस दिखाई देता है, तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है.
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता
1: तो ये
0: है।
1: बालनेस कभी दिखाई देता है. 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है.
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल. और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं. तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है.
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूं तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है. लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है. मैं नहीं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके, तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए.
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल.
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए
1: तीन महीने के कितने हो गए? तो
0: मेरी। जी
1: 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए.
0: चालीस
1: लगा
0: पचास
1: 40-50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए. आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं.
0: और पुरुषों में
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता है क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं. और
0: जी
1: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे. कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है.
0: ठीक
1: इसको नॉर्मल
0: बात
1: नहीं कहा जाता है.
0: जी।
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपका हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है. ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
0: ये जो
1: जिसको
0: आपने
1: हम,
0: टर्म यूज की,
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखा जाता है.
0: ब्लू कलर की रोशनी में।
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें. तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं. उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है. दैट
0: जी
1: इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू. सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
0: बिल्कुल।
1: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, शेड होते रहेंगे. आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है, तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है.
0: जी बिल्कुल।
1: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन,
0: ये समझने की बात
1: ये
0: है।
1: समझने की बात है. तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है. और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूं कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ
1: नहीं,
0: के।
1: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है, ट्राइकोलॉजिस्ट
0: ओके
1: एक डिग्री नहीं है.
0: जी जी
1: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं.
0: ओके
1: तो उस पर मैं भाषण नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है. तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर. यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं.
0: जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है. यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं, 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के

0: सेशन करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
1: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
0: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
1: जी,
0: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग
1: और उसका असर बालों पर जाता है।
0: बिल्कुल
1: जी, महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
0: महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
1: जी,
0: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे।
1: बढ़िया बात,
0: हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है, तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है। और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि PCOD है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना? बिल्कुल, पहले के जमाने में था तो क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस
1: नहीं,
0: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
1: जी ये बहुत आज के जमाने की चीज।
0: यस, और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितने बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
1: जी,
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो है वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खान पान ठीक नहीं किया तो इसका
0: सभी
1: असर।
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शिका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती हैं।
1: दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के,
0: ओके
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं, बोलो खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
0: ओके
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं, और वहाँ उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है
0: इस उम्र में तो सबका होता,
1: सबका,
0: हमारा भी हुआ
1: हाँ
0: था।
1: बिल्कुल यही डायलॉग होता
0: जी, तो इसको कैजुअली नहीं
1: हाँ,
0: लेना।
1: इसको कैजुअली नहीं लेना है। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है, वही जो मैंने पहले बताया,
0: एक
1: हेयर
0: बार फिर
1: शेडिंग।
0: बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल।
1: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी रीठा शीका काई चाय पत्ती जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना
1: नहीं,
0: घरों में?
1: मेहंदी रीठा शिकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का
0: ओके
1: जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं।
0: उल्टा हो जाएगा।
1: सी इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के, और उनका इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बोतल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
0: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा।
1: सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
0: बिल्कुल
1: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया, या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
0: जी
1: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
0: ओके उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगेगी। मुझे लगता है कि यहां पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से पानी।

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे हैं।
1: तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे।
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर के वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओ हो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए। तो
0: नहीं, ये हिसाब लगाइए, तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओहो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं,
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो थिन थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
0: जी,
1: तो वही कहना है वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
0: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
1: यस,
0: बढ़िया गाना, कैफी आजमी का है। तो
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत। और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि 2 महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी।
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉयिंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
0: और यहाँ तो
1: उल्टा
0: का खाना रात को हो रहा है।
1: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
0: यस यस, बिल्कुल।
1: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
0: चिंता की बात है।
1: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
0: जी
1: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
0: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: स्मोकिंग का काफी असर गिरता है.
0: जी, और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है. स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है. कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है ना. इवन पैसिव स्मोकिंग, कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं. तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर.
0: बिल्कुल अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल.
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है।
1: बहुत बड़ा भ्रम है.
0: जी हाँ।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है,
0: जी
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है. हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है. अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे. एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है. क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है।
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं.
0: बिल्कुल
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है. भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है.
0: तो ये समझने की जरूरत
1: या
0: है।
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है.
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए,
1: बिल्कुल.
0: है ना।
1: यस.
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदन आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
5: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा साया साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
6: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ।
7: एक सौ 2.7 FM पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

शाम की ठंडी हवा और दोस्तों की खिलखिलाहट मिलकर जैसे दिन भर की थकान चुरा लेती है। कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई बिना मांगे सलाह देता है और कोई बस मजाक करके माहौल हल्का कर देता है। सच्चे दोस्त शायद वही होते हैं जिनके सामने हमें खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके साथ चुप्पी भी बातचीत जैसी लगती है। कभी जीवन की बड़ी समस्याओं का हल किसी बड़ी किताब या भाषण में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर की गई एक सच्ची बातचीत में मिल जाता है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना जरूरी है, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमारी छोटी छोटी आदतों से ही होती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अच्छे व्यवहार अपनाएं तो उसका असर धीरे धीरे पूरे समाज पर दिखाई देने लगता है। जैसे कि घर से निकलते समय बिजली और पंखे बंद करना, पानी को बेवजह न बहाना, कूड़ा सड़क पर न फेंकना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना। ये काम देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब लाखों लोग इन्हें अपनी आदत बना लेते हैं तो परिणाम बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इसी तरह किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, कतार में अपनी बारी का इंतजार करना और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना, ये सारे कार्य अच्छे नागरिक होने की पहचान है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी भी दिखानी चाहिए। युवाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। युवा खुद अच्छी आदतें अपनाने के साथ साथ अपने दोस्तों, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि बदलाव हमेशा किसी और से शुरू नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारे घर के आसपास की सभी जगह साफ हो, सड़कें सुरक्षित हों और समाज में सहयोग की भावना बढ़े, तो शुरुआत हमें अपने व्यवहार से करनी होगी। एक व्यक्ति की अच्छी आदत दूसरे को प्रेरित करती है और फिर वही आदत धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले सकती है। इसीलिए छोटी कोशिशों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यही छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, एक बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रख सकती हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। लगातार बढ़ता काम का दबाव, काम करने का लंबा वक्त, प्रतियोगिता और हर समय ऑनलाइन रहने की आदत ने लोगों के आराम और परिवार के लिए समय को कम कर दिया है। इसका असर केवल काम पर नहीं बल्कि रिश्तों, मानसिक शांति और जीवन की खुशियों पर भी पड़ता है। हम सभी को इस विषय पर सोचना चाहिए, हमें सजग होने की आवश्यकता है। दोस्तों, काम जरूरी है लेकिन जीवन में परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, रुचियों और आराम के लिए भी समय होना चाहिए। सही प्राथमिकताएं तय करके और समय का बेहतर प्रबंधन करके कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में आइए वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है, वर्तमान समय में कार्य और जीवन के मध्य संतुलन की कमी, और वार्ताकार हैं महिमा मित्तल।
5: नमस्कार दोस्त, आइए कुछ बात करते हैं आपकी जिंदगी के बारे में। बहुत ज़्यादा लगता है उलझ गए हैं आप अपने काम के सिलसिले में। शायद आप जी नहीं रहे हैं, बस समय काट रहे हैं। हमारी भागती हुई जिंदगी में एक समय के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तब हमें यह एहसास होगा कि हमने कुछ चंद पत्थरों के लिए अपने सोने जैसे महत्वपूर्ण पल गंवा दिए। आइए कुछ बातें इसी विषय में करते हैं। हमारा दिन शुरू होते ही दिमाग में 50 तरह की चिंताएं चलने लगती हैं, जबकि हमें पता है कि एक एक दिन करके हमारा जीवन खत्म हो रहा है, फिर भी हम लोग अपने दिनचर्या से कुछ पल सुकून की नहीं निकालते हैं। भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जिंदगी भर इंसान सोचता है कि उसके पास अपना मकान हो, अपना परिवार हो और सारे संसाधन हो, पर कभी हमने यह गौर किया है कि क्या हम उस मकान में अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं, अपने व्यस्त जीवन में से खुद का ध्यान रख रहे हैं? 50 तरह की दवाइयाँ खाकर रोज काम पे निकल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा आपको अपने बारे में सोचना चाहिए? अगर आप हैं तभी आपके पास सारी चीजें हैं, तभी आप सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा पाएंगे। अगर आपके दांत सही हैं तभी आप 50 तरह के व्यंजन खा पाएंगे। अगर आपके हाथ सही हैं तभी आप काम कर पाएंगे। अगर आपका कमर सही है तभी आप आराम कर पाएंगे। लेकिन नहीं, हम तो पता नहीं किस दौड़ में निकल पड़े हैं कि हमें कुछ खबर ही नहीं है। अपने व्यस्त जीवन में से खुद का ध्यान कब रखेंगे हम? आइए हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं जो आपको थोड़ा तो सोचने पर मंजूर कर ही देगी। आपको कार्य और जीवन में संतुलन कैसे रखना है यह आपको समझना होगा। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में धन माया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिकता प्रथम आपके शरीर को दी गई है। अगर आप निरोग हैं तभी सब कुछ है। इन चार लाइनों में भी आप देख सकते हैं कि पहला सुख आपके स्वास्थ्य को बताया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सुबह 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। आपका स्वास्थ्य सही होगा तो सब कुछ सही होगा। आप प्रातःकाल उठिए, थोड़ा गर्म पानी लीजिए और थोड़ा योग कीजिए। आप इस विश्वास करिए कि इसका परिणाम आपको 1 महीने में ही दिखने लगेगा। आप योग को अपनाएंगे तो योग आपको अपना लेगा। अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है तो आप प्राणायाम थोड़ा करिए, जैसे भस्त्रिका हो गया, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आपके दिमाग में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो चिंताएं, निद्रा, जो आपको दिक्कत आ रही है, जो आप बिना मतलब की दवाई खाए रहे हैं, वो कम हो जाएगी। कुछ नहीं चाहिए आपके शरीर को, बस आपका पूर्ण रूप से समर्पित 1 घंटा चाहिए। और वो आप जो 1 घंटा देंगे ना, वो वह अपने सभी काम को किनारे रख के दीजिएगा। ये नहीं कि आप योग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऑफिस में मीटिंग कैसी चलेगी। अब तो हमारा विज्ञान भी इस बात को मानता है कि योग से ही होगा। करे योग, रहे निरोग। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर हम धन को उसके बाद रखते हैं। अगर आपको खुशी पूर्वक जीवन जीना है तो आप यह याद रखिए कि आप स्वस्थ रहिए, नहीं तो जो आपका जिंदगी भर का कमाया हुआ धन है ना, वो डॉक्टरों की जेब में चला जाएगा। कि योग में हर समस्या का निवारण है। हमारे कैंसर जैसे बड़े रोग लेकर, जुखाम सर्दी तक छोटे रोग लेकर आप भागते रहते हैं दिन भर, पर आपने कभी सोचा है कि जिस परिवार के लिए आप इतना कर रहे हैं उस परिवार को उस धन से ज्यादा आपके थोड़े समय की भी जरूरत पड़ती है। संतुलन बनाइए थोड़ा अपने काम, अपने जीवन को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर थोड़ा सोचिए, नहीं तो आपको मानसिक कष्ट होगा कि आपने एक अनमोल समय निकाल दिया जो आपको थोड़ा अपने बच्चों को बड़े होते देखना था, अपने जीवन साथी का साथ देते हुए, अपने परिवार को परिवार बनाते हुए, अपने मकान को घर बनाते हुए देखना था। आज के समय में कुछ चीजें से मैं सहमत हूँ कि दिन पे दिन नौकरी की मांग बढ़ रही है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। वर्क फ्रॉम होम लोग बहुत सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, जब आप अपना काम अपने घर पर करते हैं ना तो उस काम की टेंशन भी घर पर लाते हैं आप। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप शाम को अपने घर आए ना तो अपने काम की जो चिंता है वो वही छोड़ कर आए, नहीं तो आपके दिमाग में 24 घंटा आपका काम चलेगा और जो आपका समय आपके परिवार के लिए था वह आप नहीं दे पाएंगे। कर्मचारी 24 घंटा ईमेल, कॉल, मीटिंग में उलझे रहते हैं जिससे उनके अपने परिवार, शौक, मानसिक विश्राम के लिए समय नहीं मिल पाता। इससे व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बाद में, मानसिक रूप से पहले ही रोगी हो जाता है, तनावग्रस्त होने लगता है। अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो बधाई हो, आप मानसिक रोग के आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने जीवन को रोबोट की तरह बना दिया है। जिस प्रकार आप चाहते हैं कि आपका हर काम समय पर हो, उसी तरह आपका शरीर भी चाहता है कि कुछ चीजें उनके लिए हो। दिन पे दिन प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, किस तरह अपने लक्ष्य को पूरा करें। डिजिटल चीजें बढ़ गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पर आप ध्यान दीजिए, आप मोबाइल को चला रहे हैं या मोबाइल आपको चला रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कहीं हम लोग मोबाइल का यूज करते करते मोबाइल तो कहीं हम लोग को यूज नहीं कर रहा, हमारी दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। आइए, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि प्रातः काल आप सुबह एक घंटा व्यायाम को दीजिए, ध्यान करिए। अपना जीवन हमने तो इतना अस्त व्यस्त कर लिया है कि कहाँ से सुबह नींद खुलेगी। रात को 2-3 बजे सो रहे हैं तो सुबह नींद कहाँ से खुलेगी। अपने नींद का समय निर्धारित करिए, थोड़ा अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार को प्राथमिकता दीजिए। आपको हर घर में एक व्यक्ति

0: आपके सामने बड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे जो अपने पिता के संस्कार इसको देने थे मैंने अपने ऑफिस काम के सिलसिले में दिए ही नहीं। आप महीने में एक बार निकलिए और अपने परिवार के साथ किसी न किसी जगह की यात्रा कर आइए। आप मानिए आपके बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। आप जान पाएंगे कि आपके परिवार के समय चल क्या रहा है, परिवार के लोग कैसे हैं। आप आधा घंटा खाने के लिए आते हैं वो नहीं, वो आपका परिवार है। आप समय बिताइए, थोड़ा अपने को ध्यान दीजिए, तभी आप संतुलन बना पाएंगे। नहीं तो आप धन इकट्ठा कर लेंगे पर आप अपना स्वास्थ्य खो देंगे, अपना परिवार खो देंगे, परिवार के प्रति जो मोह माया है वो खो देंगे। एक समय आपके बच्चे को लगने लगेगा कि पापा तो बस ऑफिस जाते हैं, बस इधर रहते हैं, मम्मी तो बस सुबह स्कूल निकल जाती हैं। धीरे धीरे उनका मोह माया खत्म हो जाएगा, तब आप किसी तरह भी उनको अपना नहीं पाएंगे। तो उनका बचपन उनसे ज्यादा आपको जीना होगा। आपको बताना होगा कि आपके पिता ने कैसे चीजें बताई थी, संस्कार देना होगा। आप मानिए आजकल जो बर्गर पिज्जा खा रहे हैं आप, क्या वो सही है? नहीं, आप बर्गर पिज्जा नहीं खा रहे हैं, आप उस पे दवा लिखवा रहे हैं कि मुझे कल ये दवा खानी पड़ेगी। उचित आहार लीजिए, घर परिवार को समय दीजिए और थोड़ा माहौल खुशनुमा रखिए। आजकल हर इंसान चिंतित हो गया है, कुछ बोलने पर चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वो कुछ नहीं, वो हमारे दिमाग में 2400 घंटा बिना मतलब की चल रही चिंताएं होती हैं। हर महीने परिवार के साथ यात्राएं करिए, अपने मित्रों को समय दीजिए। सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट करिए आप, नहीं तो नोटों पे आप सब कुछ खरीद लेंगे, अपना स्वास्थ्य अपना परिवार नहीं खरीद पाएंगे। प्राकृतिक रूप से दी गई किडनी हार्ट अलग चीज होती है और आर्टिफिशियल अलग चीज होती है, इस बात को आप स्वीकार करिए। हम लोग कल की चिंता करते करते आज का समय व्यर्थ कर रहे हैं। कितना धन संचित कर ले, कितने आगे हो जाए, अपना नाम कितना बढ़ा ले, अपने बड़े बड़े होटलों में खा ले, आपको नहीं लगता कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो दिक्कत आ रही है कि हमारा धन हमारे घर आ रहा है फिर डॉक्टरों के पास चला जा रहा है, पाचन संबंधी दिक्कत आ रही है। हम लोग अपनी और कुछ नहीं बीमारियों का आकर्षित कर रहे हैं। आजकल लोग खुद को एक जगह पर सीमित कर लिए हैं और इसी अज्ञानतावश वह जान नहीं पाते हैं कि हमारा प्राकृतिक वातावरण क्या महत्व रखता है। जाइए आप कभी उत्तराखंड साइड, पता चलेगा कि क्या प्राकृतिक वातावरण है। हम लोगों ने एक जगह में सीमित रहकर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, स्कूल से ये जाने लगे। नहीं नहीं, आप जिंदगी का बहुत अनमोल समय व्यर्थ कर रहे हैं थोड़े कुछ चीजों के लिए। धन महत्वपूर्ण नहीं है, है पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यह गलत, जिस बच्चों को आप पढ़ाने के लिए कमा रहे हैं वह बच्चे पढ़ भी लेंगे तो क्या आप वाले संस्कार आ पाएंगे जो आपको पिता से मिले थे? नहीं, वह तभी आ पाएंगे जब आप थोड़ा समय उसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उसे पुराने अपने समय के दोहे सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे, यह तभी आ पाएंगे। आप बच्चों को बर्गर पिज्जा खिला देंगे सही है, पर क्या वो सत्तू का स्वाद आ पाएगा जो आपकी माता खिलाती थी? वो असली प्रोटीन है। बच्चे आजकल प्रोटीन शेक तो पी रहे हैं पर ये भूल जा रहे हैं कि जो चने के सत्तू में स्वाद है वह कहीं और नहीं है। आप जितना प्राकृतिक से जुड़े रहेंगे ना, आपको खुद हल्का और खुश महसूस होगा। तो दोस्तों, वर्तमान समय में जरूरी है कि आप कार्य और जीवन में संतुलन बनाइए। धन बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। अपना स्वास्थ्य रखिए, परिवार के साथ खुश रहिए और अपने चारों तरफ सकारात्मक माहौल बनाइए। हर वक्त प्रतिस्पर्धा करना सही नहीं है। आपके साथ अभी तक बस इतना ही, धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था वर्तमान समय में कार्य और जीवन के मध्य संतुलन की कमी। वार्ताकार थी महिमा मित्तल। दोस्तों, आज मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तकनीक ने हमारा जीवन आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ एक नई समस्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है और वह है ई कचरा। जब पुराने मोबाइल, खराब चार्जर, कंप्यूटर, बैटरी, हेडफोन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे काम के नहीं रहते तो हम अक्सर उन्हें सामान्य कूड़े के साथ फेंक दिया करते हैं और यही ई कचरा पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। दोस्तों, समस्या यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें सामान्य कचरे की तरह फेंकना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर इन्हें खुले में फेंका

दोस्तों, चलते चलते एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ, जो कि समय की कीमत क्या मायने रखती है, हमें सिखाता है। विचार है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। जिसका अर्थ है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इंसान को हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज कार्यक्रम युववाणी का सफर यहीं तक। अब अपनी रेडियो हमसफर रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी वह श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बेनो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सुधा का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसी हैं बहनों? उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। जब महिलाओं की स्वास्थ्य की बात आती है तो महिलाएं अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारे परिवार की जिम्मेदारी उन पर ही तो होती है। एक महिला परिवार की धुरी होती है, इसीलिए उसको अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वह घर की जिम्मेदारियां संभालती है, बच्चों का ध्यान रखती है और परिवार के हर सदस्य की चिंता करती है। घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते महिलाएं अक्सर अपनी थकान और परेशानियों को छिपा ले जाती हैं। लेकिन आपको अपनी सेहत के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, स्वच्छता, नियमित शारीरिक गतिविधि और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच, छोटी छोटी आदतें महिलाओं को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहनों, अपनी परेशानी को सहकर चुपचाप रहने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खान पान में हरी सब्जियां, दालें, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी जरूर शामिल करना चाहिए। यदि शरीर में कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाना जरूरी है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नियम के अनुसार चलें तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। और आप सब यह भी जानती हैं कि आपके बिना आपके यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपका घर और परिवार और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बहनों, स्वस्थ रहना तो सभी के लिए जरूरी है। महिला सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि पूरे परिवार की ताकत होती है, इसीलिए महिलाओं की सेहत का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। बहनों, अक्सर महिलाएं कहती हैं पहले घर वालों को देख लें तो अपने बारे में सोचेंगे। वह हमेशा पहली प्राथमिकता अपने परिवार को देती हैं। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, पर साथ ही अपना भी ध्यान रखिए। आपके लिए संतुलित आहार भी बेहद जरूरी है। भोजन में विविधता रखें, शरीर की जरूरत के अनुसार पौष्टिक चीजें शामिल करें। स्वच्छता महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। मानसिक सुकून भी स्वास्थ्य का हिस्सा है। अपनी भावनाएं परिवार के लोगों से साझा करिए। कुछ समय अपने पसंदीदा काम के लिए निकालिए और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। एक स्वस्थ महिला अपने परिवार में सिर्फ खुशियां नहीं लाती बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ आदतें सिखाती है। आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करें। घर के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैंने बारिश का मौसम आते ही मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है, इसीलिए इस मौसम में थोड़ी सी सावधानियां बरतना जरूरी है। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। मलेरिया रोग, कारण, लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू, चिकित्सा अधिकारी ओबरा परियोजना चिकित्सालय, और भेंट करता है बबीता बत्रा। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: ने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मच्छर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। आज हम जानेंगे इस बीमारी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके लिए हमारे साथ हैं ओबरा परियोजना चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि मलेरिया क्या है और ये कैसे फैलता है?
2: जी, मलेरिया एक संक्रामक और परजीवी जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नाम के एक सूक्ष्म जीव परजीवी होता है उसके कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
1: अच्छा।
2: भारत में मलेरिया के प्रमुख प्रकार जो हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, दो वैसे तो कई होते हैं लेकिन दो मुख्य रूप से भारत में होते हैं। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जो अपेक्षाकृत कम गंभीर होता है लेकिन बार बार बुखार दे सकता है, वहीं प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम का कहें तो ये सबसे खतरनाक होता है और समय पर इलाज ना मिले तो इससे जानलेवा हो सकती है। अब यह है कि मलेरिया को समझने के लिए कि सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी बीमारी कैसे फैलती है और क्या बीमारी है, तो इसको लाइफ साइकिल को समझना है ना कि ये जो इसका परजीवी है कैसे मच्छर और इंसान का कैसे जीवन चक्र है इनका।
1: जी,
2: तो ये जो परजीवी है दो अलग अलग जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पहला एक तो इंसान ह्यूमन होस्ट हो गया, दूसरा मच्छर वेक्टर होस्ट है। तो पहला चरण जब देखें तो जैसे कोई संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वो अपना लार सलाइवा के साथ स्पोरोजाइट जो प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है स्पोरोजाइट्स नाम के, उस परजीवी को खून में प्रवेश करा देती है और ये स्पोरोजाइट्स बहुत तेज गति से खून के माध्यम से लीवर में पहुंच जाते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट में ये लीवर के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर ये लीवर में जा करके लीवर सेल्स के अंदर पहुंच जाती है जो लीवर की कोशिका है उसमें पहुंच जाते हैं और वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। इस स्थिति में वैसे मरीज को कोई लक्षण नहीं होता, इसलिए इसको साइलेंट फेज भी कहा जाता है। कुछ दिनों के अंदर ये जो स्पोरोजाइट्स हैं ये हजारों की संख्या में बढ़कर एक स्टेज अगला स्टेज बनाते हैं जो कि साइजोंट बनाते हैं और ये साइजोंट फिर वो मीरोजाइट्स में बदल जाते हैं और ये मीरोजाइट्स टूटकर फिर ये लीवर से खून में पहुंच जाते हैं।
1: अच्छा
2: जी। फिर मीरोजाइट्स खून में आकर आरबीसी जो खून के लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें घुस जाते हैं और आरबीसी के अंदर ये परजीवी कई चरणों में बढ़ते हैं, जैसे कई स्टेजेस बनते हैं उनके, जैसे रिंग फॉर्म बनाते हैं, एक ट्रफोजाइट बोलते हैं, एक साइजोंट फॉर्म बनाते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं और अंत में जब ये साइजोंट बन जाते हैं अंत में ये आरबीसी को तोड़ देते हैं, मतलब जो आरबीसी सेल्स है उसको तोड़ देते हैं और नए मीरोजाइट्स मतलब बहुत सारे मीरोजाइट्स बाहर निकल के आते हैं। जब बड़ी संख्या में आरबीसी एक साथ टूटती है तो क्या होता है, परजीवी और टॉक्सिक पदार्थ खून में फैल जाते हैं पूरे शरीर में।
1: अच्छा।
2: ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में आ जाते हैं जिससे शरीर का जो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम है वो रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है। इसके कारण सबसे पहले ठंडा लगना, फिर तेज बुखार और फिर पसीना आता है। यह चक्र में होता है 48 या 72 घंटे में बार बार होता है, इसलिए
1: अच्छा।
2: मलेरिया में जो बुखार होता है वो दौरों में आता है, मतलब 48 घंटे पे आता है या 72 घंटे पे आता है। सब परजीवी जो होते हैं आरबीसी को नहीं होते, कुछ गैमेटोसाइट्स में बदल जाते हैं, जैसे मैंने बोला था कि अभी वो उसमें बुखार करवाते हैं, लेकिन कुछ जो गेमिटोसाइट्स में बदल जाते हैं जैसे मेल गेमिटोसाइट्स और फीमेल गेमिटोसाइट्स। ये जो है मलेरिया को संक्रमण फैलाने वाले रूप होते हैं। जब ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो ये गेमिटोसाइट मच्छर के पेट में पहुंच जाते हैं और मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स मिलकर जायगोट बनाते हैं, जायगोट से फिर ये ओसिस्ट बनता है, ओसिस्ट के अंदर हजारों नए स्पोरोजाइट्स बन जाते हैं। ये मच्छर में साइकिल चलता है और ये लगभग 10 से 14 दिन तक लेता है। जब ये ओसिस्ट फटता है मच्छर में तो स्पोरोजाइट्स मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। अब यह मच्छर जब किसी नए व्यक्ति को काटेगा तो इन्फेक्शन फिर वही शुरू हो जाता है, स्पोरोजाइट्स फिर चले जाते हैं। तो ये इनका लाइफ साइकिल होता है। तो पूरे कहेंगे तो मच्छर इंसान को काटता है, फिर ये लीवर में जाता है, फिर खून में जाता है, फिर दूसरा मच्छर उसे चूसकर आगे फैलाता है। ये एक सरल लाइन में हुआ जी। इसमें ये ध्यान देने वाली बात, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम वाली मलेरिया है ये संक्रमित आरबीसी, इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी संक्रमित हो रहे थे वो आपस में चिपक जाते हैं, इसको सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, और चिपक के थक्का बनाते हैं जिससे दिमाग और किडनी है ना इनमें खून का प्रवाह रुक जाता है, इससे इसे सेरेब्रल मलेरिया या ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं। जबकि वही वाइवेक्स मलेरिया है ये उतना, इसमें बुखार तो बार बार आते हैं है ना, क्योंकि इसमें जो इनका प्लाज्मोडियम है ये डोरमेंट स्टेज में लीवर में रह जाता है जिससे रिलैप्स होता है ना, ये रिलैप्स के कंडीशन वाइवेक्स में देखा जाता है।
1: अच्छा।
2: जी
1: तो है तो खतरनाक बीमारी ये भी, मतलब मलेरिया भी जो है
2: जी।
1: और ये तो मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या हैं जिन पर खास ध्यान देना चाहिए हम लोगों को?
2: जी, सबसे प्रमुख लक्षण मलेरिया के तो बुखार हैं, लेकिन ये सामान्य बुखार से थोड़ा अलग होता है। मलेरिया का बुखार अक्सर एक विशेष तरीके से आता है जिसे हम बुखार का दौरा कहते हैं। जैसे कुछ स्टेजेस आए, जैसे पहले आता कोल्ड स्टेज जिसमें ठंड लगती है, अचानक तेज ठंड लगता है, शरीर कांपता है, कपकपी होती है, मरीज को कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंड लगती रहती
1: है,
2: कभी कभी ये अवस्था जो 15 मिनट से 1-1 घंटे तक रह सकती है। फिर कोल्ड स्टेज के बाद आता है हॉट स्टेज जिसमें तेज बुखार अचानक से फिर चढ़ता है। इसमें शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है और बुखार 102 से लेकर 105 फारेनहाइट तक जा सकता है।
1: अच्छा।
2: फिर सिर दर्द, बेचैनी, शरीर में दर्द, फिर मरीज बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। फिर हॉट स्टेज के बाद आएगा स्वेटिंग स्टेज। इसमें होता है कुछ समय बाद अचानक बहुत पसीना आएगा, बहुत तेजी से बुखार उतरने लगेगा और मरीज को थोड़ी राहत मिलती है। यही तीनों चरण मिलकर एक मलेरिया का अटैक बनाते हैं और ये इसलिए बुखार का पैटर्न होता है। मलेरिया में बुखार जैसे मैंने बताया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसमें 48 घंटे हर दूसरे दिन बुखार आता है, या कुछ प्रकार जो होते हैं प्लाज्मोडियम के उसमें 72 घंटे पे भी आता है, और लेकिन फैल्सिफेरम मलेरिया में ये पैटर्न बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है। और इसके साथ ये भी केवल बुखार ही नहीं बल्कि ये लक्षण तो दिखते ही है, उसके साथ सिर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी, थकान, भूख कम लगना, उल्टी, नौजिया होता है, कभी कभी दस्त होते हैं, लंबे समय तक अगर जो बुखार रहता है तो खून की कमी, एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है।
1: और सब लक्षण दिखें तो फिर टेस्ट ही करा के ही पता चलेगा।
2: जी जी जी, डॉक्टर के पास जाना होता है। जी, और गंभीर लक्षण भी जैसे गंभीर लक्षण दिखते हैं, जैसे मरीज बेहोश हो जाता है, बार बार उसको नींद में रहते, उसको तुरंत मतलब सुस्ती सी आती है, बोलने या समझने में दिक्कत हो रहा है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पेशाब कम हो रहा है, उल्टी ज्यादा बढ़ गई, अचानक से झटके आने लगे, है ना, तो ऐसे मामले में देरी नहीं करते हैं, तुरंत अस्पताल जाते हैं।
1: जी, और अगर यही मलेरिया के लक्षण दिखे तो वैसे तुरंत करना क्या चाहिए, वही हॉस्पिटल जाएं, जांच कराएं?
2: जी जी, पहला कदम तो यही है कि तुरंत सरकारी अस्पताल या जो भी अस्पताल है वहाँ पे जाएं, ठीक, और उसके बाद से मलेरिया की जांच होती है, है ना, फिर एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, रैपिड डायग्नोसिस जल्दी से परिणाम उसमें आ जाते हैं, जांच से ये भी पता चलता है कि ये वाइवैक्स है या फैल्सिफेरम है, उसी के अनुसार दवा दी जाती है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं समय पर पूरी अवधि तक लेना बहुत जरूरी होता है। जी, और इसमें खुद से दवा लेने से बचे, कोई लोग मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेकर खा लेते हैं और एक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गलत दवा लेने का खतरा, बीमारी छुप सकती है और रेजिस्टेंस का हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।
1: जी, और ये बरसात के मौसम में मलेरिया का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां जरूरी है?
2: जी, बारिश के दौरान जगह जगह पानी जमा हो जाता है, जैसे घर की छत पर, गमलों में, कूलर में, पुराने टायर, डिब्बे, बोतल, नालियों और गड्ढों में, यही जमा हुआ पानी मच्छरों के अंडे देने और बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। खास बात यह है कि एनाफिलिस मच्छर जो है साफ पानी में भी पनप सकता है।
1: अच्छा।
2: इसलिए केवल गंदी पानी से ही खतरा नहीं होता। जी, दूसरा, मच्छर का जीवन चक्र तेज हो जाता है इसमें, बरसात में मतलब फेवरेबल हो जाता है, बरसात में नमी और तापमान ऐसा होता है कि मच्छर के अंडे जल्दी लार्वा बनते हैं, लार्वा जल्दी मच्छर बन जाते हैं, फिर 7-10 दिन में पूरा मच्छर तैयार हो सकता है, इसलिए अगर पानी एक हफ्ते तक भी जमा रहा तो मच्छर पैदा हो जाएंगे।
1: मतलब कहीं भी पानी जो है वो जमा नहीं होना चाहिए, चाहे साफ पानी हो चाहे गंदा पानी हो।
2: जी, जानते हैं कि जैसे बचाव कैसे करें इसमें, जैसे वही कि पानी जमा ना होने दें, सोर्स कंट्रोल करें, घर के आसपास पानी जमा ना हो, गमलों की प्लेट हर 2-3 दिन में खाली करें, कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें, छत पर जमा पानी को साफ करें, टायर, डिब्बे, बोतल इसको उल्टा करके रखें, फ्रिज के नीचे पानी इकट्ठा होता है उसको ट्रे को साफ करें,
1: जो
2: पानी और उस पानी की टंकी हमेशा ढक कर रखें, बर्तन खुले ना रखें, हैंड पंप या पाइप के आसपास पानी जमा ना होने दें, घर के अंदर मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम या मशीन का उपयोग करें, पूरी बांह के कपड़े पहने, खिड़की और दरवाजे पर जाली लगाएं, और कम्युनिटी स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे भी प्रयास होते हैं, जैसे नालियों की सफाई, गड्ढों को भरना, पंचायत, नगर पालिका द्वारा फॉगिंग की जाती है और जागरूकता अभियान। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, सरकारी उपयोग जो उपाय जो भी होते हैं, फॉगिंग, जैसे दवाई छिड़काई हो रही है, स्प्रे हो रहा है, मतलब ना, इसमें इनका सहयोग देना चाहिए सरकार का।
1: जी, और डॉक्टर साहब, क्या मलेरिया का इलाज पूरी तरह संभव है, और अगर इलाज में देरी हो जाए तो क्या खतरा हो सकता है?
2: जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर मरीज समय पर जांच कराए, सही दवा ले और पूरा इलाज पूरा करे, तो मलेरिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मलेरिया की दवाएं शरीर में मौजूद जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसको मारती हैं, कुछ दवाएं खून में मौजूद परजीवी को खत्म करती हैं, और लीवर में छिपे परजीवी को भी खत्म करता है, जिसको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के केस में देते हैं इसको। यही देरी होती है तो संभावित खतरे जैसे हो सकते हैं, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, सीवियर एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, किडनी पर असर, रीनल फेल्योर हो सकता है, फेफड़ों पर असर हो जाता है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, और ब्लैक वाटर फीवर, जैसे पेशाब का रंग काला या गहरा हो सकता है, ये क्योंकि ये गंभीर जो आरबीसी बहुत ज्यादा टूटते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है, ब्लैक वाटर फीवर, और मल्टी ऑर्गन फेल्योर में भी जा सकता है मरीज।
1: जी। मतलब थोड़ा भी लक्षण दिखे तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा जी, देना जी, चाहिए जी, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो क्या बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर मलेरिया का ज्यादा असर होता है?
2: जी, बच्चों पर मलेरिया का प्रभाव, बच्चों का शरीर और उनकी प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं होती, इसलिए मलेरिया का असर उनमें तेजी से हो सकता है। बच्चों में बुखार अचानक बहुत तेज हो सकता है, कई बार बुखार के साथ दौरे भी हो सकते हैं और उनका ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है, ग्रोथ उनका रुक सकता है जी। और गर्भवती महिलाओं में भी यही खतरा रहता है, माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ता है। और कभी कभी प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है होता है, उसमें भी ये आरबीसी सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से है ना, माँ के बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है और गर्भ में बच्चे पर प्रभाव होता है, जैसे उनका लो बर्थ वेट हो सकता है, IUGR हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है और गर्भपात का भी डर रहता है।
1: और डॉक्टर रामेश्वर जी ये बताएं, घर में मलेरिया से बचाव के लिए कौन कौन से आसान उपाय हम लोग कर सकते हैं?
2: इसमें मलेरिया से बचा का सबसे महत्वपूर्ण चीज, मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा। इसलिए घर पर बचा का मुख्य उद्देश्य है मच्छरों को पनपने से रोकना, मच्छरों के काटने से खुद को बचाना। पनपने से रोकने के लिए वही घर में ध्यान देने वाली जो है कि पानी इकट्ठा ना होने दे, जैसे हमने अभी बात किया था, साफ सफाई और आसपास वातावरण ध्यान दे, नालियों को साफ रखें, गड्ढों में पानी जमा ना होने दें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, है ना। अगर आसपास गंदगी या पानी जमा रहेगा तो मच्छर जरूर बढ़ेंगे।
1: घर के अंदर तो सफाई रखनी है, बाहर की भी सफाई बाहर बहुत सफाई है।
2: मच्छरों के काटने से भी बचाव करना है, मच्छरदानी का यूज करना है ना जी।
1: और घरेलू नुस्खों से भी मलेरिया ठीक हो सकता है?
2: जी नहीं, घरेलू नुस्खों से इसमें कोई इलाज नहीं हो सकता। अच्छा। इसमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जांच करा के मलेरिया का पता लगा के उसका दवाई कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न है कि मलेरिया से बचाव के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम मिलकर पूरी तरह से नियंत्रित और काफी हद तक समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, सावधानी और समय पर कार्रवाई करें। मेरा श्रोताओं से अंतिम संदेश 3 सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है, पहचान, इलाज और बचाव। हर बुखार को हल्के में ना लें। अगर किसी व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आ रहा है, बार बार बुखार हो रहा है, तो साथ में कमजोरी या सिरदर्द है, तो इसे सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज ना करें। हर बुखार को मलेरिया की संभावना मानकर जांच कराएं। मलेरिया की पुष्टि केवल खून की जांच से ही होती है। सही समय पर इलाज करने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, जटिलताएं नहीं होती हैं और जान बचाई जा सकती है।
1: तो आज हमने डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी से जाना कि मलेरिया से बचाव कितना जरूरी है। याद रखना है, साफ सफाई, जागरूकता और समय पर इलाज ही इसका सही समाधान है। डॉक्टर रामेश्वर जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: बनो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

झूला झूलती सखियां, कजरी गाती नार, सावन की फुहारों में खिला है हर संसार। गीत सुनकर आप लोगों को मजा आया होगा, है ना बहनों? और सावन का महीना आते ही प्रकृति हरियाली की सुंदर चादर ओढ़ लेती है। रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को आनंद से भर देती है। सावन भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना जाता है। श्रद्धालु सोमवार के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और सुख शांति की कामना भी करते हैं। सावन हमें प्रकृति के करीब आने और पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश देता है। इस मौसम में रिमझिम फुहारे जब धरती को भिगोती हैं, तो पेड़ पौधे जैसे खुशी से झूम उठते हैं। यह महीना हमें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाता है। पेड़ों की डालियों पर झूले, महिलाओं की हंसी खुशी और कजरी के गीतों की मधुर धुन सावन की रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। तीज के अवसर पर महिलाएं सजती संवरती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और पारंपरिक गीतों के साथ उत्सव का आनंद लेती हैं। कजरी गीत हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं की अमूल्य धरोहर है। इन्हें गाते हुए हमें अपने संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। सावन की फुहार, हरी हरी डाल और उस पर पड़ता झूला, मानो प्रकृति ने खुद खुशियों का उत्सव सजा दिया हो। पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ते ही गांव की गलियां कजरी के मधुर सुरों से गूंज उठती हैं। तीज का त्यौहार महिलाओं के मिलन, उल्लास और अपनी लोक परंपराओं से जुड़ने का सुंदर अवसर है। सखियों के साथ झूला झूलना, कजरी गाना और सावन में रिमझिम फुहारों का आनंद लेना, ये पल सावन को यादगार बना

बना देते हैं। कजरी के सुरों में सावन की मिठास है, झूलों की पींगों में बचपन की यादें हैं और तीज के उत्सव में हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। सावन आते ही मायके की याद, सखियों का साथ महिलाओं के मन में एक अलग ही खुशी भर देती है। आज के बदलते दौर में हमें अपने लोक परंपराओं को जीवित रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तीज, कजरी और सावन के झूलों की मिठास को समझ सके। सच में बहनों, सावन की रिमझिम में जब कजरी की तान सुनाई देती है तो लगता है जैसे धरती और आकाश भी खुशी से झूम रहे हैं। सावन आया झूम के लेकर खुशियों की बहार, तीज, कजरी और झूलों से महका हर परिवार। आइए बहनें, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत

मैनो हल्दी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मैनो भोजन में उचित मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल स्वाद और रंग के साथ साथ हमारे आहार में वनस्पति यौगिक भी जोड़ता है। हल्दी वाला दूध सर्दी जुकाम के समय कई घरों में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल में लिया जाता है। भारतीय परंपरा में हल्दी का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल और घरेलू नुस्खों में भी किया जाता है।

लिए किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इसे दवा का विकल्प न माने। बहनों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप हमारे गोरखपुर से अनुप्रसारित भोजपुरी समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली जिला में 889 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 346 विकास परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल। एह मौका पर वहां के मकान विहीन परिवारन के आवासीय पट्टा के आवंटन पत्रों बटली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रायबरेली जिला के बदला स्वरूप के बारे में चर्चा कैन।
1: आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब तो रायबरेली की पहचान बन चुकी है। 25-26 में इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया। ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और पहली बार मई 2026 में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
0: ऐसे पहले मुख्यमंत्री 1857 के पहला स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के 222वीं जयंती पर आयोजित भाव समर्पण समारोह में भी हिस्सा लेने। रायबरेली जिले में भयल कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री राणा बेनी माधव बख्श सिंह के व्यक्तित्व आकृतित्व के बारे में जिक्र कैल।
2: आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। आपने देखा होगा अवध क्षेत्र में इस पूरे आंदोलन को उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया। कुछ हजारों के संख्या में स्थानीय नागरिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे।
0: सावन महीना के आखिरी सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरन में आज भोरवे से श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग का दर्शन पूजन आ जलाभिषेक कर रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में कांवड़ियना श्रद्धालुओं का भारी भीड़ लगता रहे भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगावत जलाभिषेक कई रहा हवे।
3: सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को काशी हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। हजारों भक्त रविवार रात से ही गंगा स्नान कर कतार में लग गए, जबकि कांवरिये बोलबम का जयघोष करते बाबा के दरबार की ओर बढ़ते रहे। मंदिर प्रशासन के अनुसार शाम तक लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके थे। रात्रि में भोग सिंगार आरती से पूर्व बाबा की रजत चल प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान कर भव्य सिंगार किया जाएगा। आरती के बाद

0: श्रद्धालु बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
1: सावन के आखिरी सोमवार पर अयोध्या में ढेर संख्या में श्रद्धालु सरजू नदी में आस्था का डुबकी लगौले के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंच के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कैले। जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गो ओरियो मंदिरन में श्रद्धालुओं का भारी भीड़ भोरवे से भगवान शिव का पूजा अर्चना कर रहा हो। रेलवे रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कैले हो। एकर उद्देश्य रेलवे स्टेशनन पर यात्रियन के लगातार साफ और सुरक्षित पेयल के पानी उपलब्ध करावल हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग का एगो प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दो दिन के दौरा पर आज लखनऊ पहुंचल। दौरा के पहला दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ के कॉलविन तालुकदार कॉलेज के अवध सभागार में विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। ऐसे पहले लखनऊ पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त मीडिया से बातचीत करने हैं।
2: उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए, खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं उनको कुछ बात समझा दें, और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज और जितने स्कूल्स हैं वहां पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम होगी।
1: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त ले कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी कैले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। लोकगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 7:05 पर। श्रोताओं, लोकगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मीना कौशल और साथी। रात्रि 10:00 सुनिएगा ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत शाम 6:50 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत, श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर। मिले जुले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सबरस का समय होगा शाम 7:31 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार राजकुमारी पत्नी राम वृक्ष भारती निवासी ग्राम कुल डोमरी टोला बिरन बहरा थाना अनपरा जिला सोनभद्र जो दिनांक 2 जून 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 30 वर्ष, लंबाई 5 फीट, इनका रंग गोरा, चेहरा गोल और जिस्म दोहरा है। इन्होंने लाल बैगनी रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, खोए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार नेहा पत्नी प्रदीप

निवासी ग्राम कुशहरा, थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र, जो दिनांक 2 मई 2026 से अपने 5 वर्षीय पुत्र तनुष के साथ लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और एकहरे बदन की हैं। इन्होंने गुलाबी कलर की कुर्ती, काली सलवार और काला दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत

0: सब पंचन के राम राम।
1: नंदू भैया,
2: भैया
1: देखा इतना बरखा बुनी होखला के बावजूद देखा हमन के बैठकी एकदम जनबा समय से शुरू हो गई बा, और अपने पंचायती के माध्यम से संदेश देवल भी जरूरी बा भैया कि देखा बरखा बुनी का दिन चल रहा बा और ऐसने में जनबा बचवा लोगन के और बुजुर्ग लोगन के सेहत का खास ख्याल जनबा रखल बहुत जरूरी बा। और बदलत मौसम में जन सर्दी जुखाम लग जाला, बुखार और मच्छर से होए वाला जन बीमारी का खतरा बढ़ेला, उसे सावधानी या सतर्कता बरतना जरूरी है।
2: बिल्कुल सही चेतावत हुआ चलो भैया। काय से की देखे है बच्चन के साफ सुथरा पानी पियावल, खाना हमेशा ताजा और ढक के रखल जाए, घर के आसपास पानी जमा मत हो कर देवल जाए। काहे से की ऐसे मच्छर के जो पनपला के मौका मिलेला, बच्चा और बुजुर्ग के जो भीजल के बाद जल्दी से कपड़ा भी बदलवा दिया जाए, शरीर सुखल रहे। अब बुखार लगातार कमजोरी या और परेशानी होके तो भैया तुरंत डॉक्टर से सलाह लेवल जाए, एमे तनिको देरी मत,
1: बिल्कुल देर न करे के चाहिए। और देखा बचपन का तो हाथ जनबा खाना खाए से पहले और शौच के बाद जनबा उस साबुन से जरूर धुलवाए के आदत डलवाए के चाहिए। और बुजुर्ग लोगों के भी जनबा दवाई समय पे दिया जाए, पानी पिए के पर्याप्त ध्यान दे और मच्छर से बचाव खातिर पूरे बांह का कपड़ा जनबा जरूर पहनाए। और देखा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहे। और घर के आसपास जो नाली बनन भी है उमेन के इकट्ठा न हो दे उमेन, और गमला और खाली बर्तन में जो जमा पानी बा ओके भी नियमित रूप से ओके हटावल करें।
2: एकदम सही कहत हुआ। और स्वास्थ्य देखा ठीक रखे खातिर रचलो भैया साफ सफाई, सुरक्षित पानी और समय पर इलाज के आदत एकदम बना लेवल जाए के चाहिए जीवन में, ताकि मतलब याद रखे कि मौसम जब भी बदलल आना तो सावधानी अगर न बरतल जाए तो परिवार के स्वस्थ रखे के जो बढ़िया उपाय बा भैया उ जरूर देखा कहीं न कहीं, चाहे बच्चन आ बुजुर्ग के बीमारी के जो तनको भैया अगर कोनो लक्षण दिखाई देवे तो नजर अंदाज न करल जाए, चाहे तेज बुखार होके, सांस लेवे में तकलीफ होके, कमजोरी होके या लगातार उल्टी दस्त होके के अगर कोनो अगर अंदेशा आपके लगे या पहचान दिखाई देवे तो स्वास्थ्य केंद्र जाके या डॉक्टर भैया से संपर्क करके उन्हें दिखावल जाए।
1: बिल्कुल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जो उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा बा ओकर सलाह और लाभ ओकर जरूर उठावे। और देखा परिवार के हर सदस्य के साफ सफाई और मच्छर से बचाव का तरीका ओके बतावे के चाहिए, सावधानी हमेशा रखे के चाहिए, स्वस्थ रहे और अपन परिवार भी सुरक्षित रहे से। और देखा बचपन के स्वस्थ और सुरक्षित रखे खातिर जनबा समय समय पर टीकाकरण करावल बहुत जरूरी बा।
2: बिल्कुल, एमआर टीका, खसरा, रुबेला जैसन बीमारी से बचावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे ला चलो भैया। और माई बाप या अपना बचपन के टीकाकरण के खातिर तारीख जरूर याद रखे और टीका छूटे मत देवे। सरकार

0: देखें टीका कार्यक्रम के तहत नजदीक स्वास्थ्य केंद्र या निर्धारित टीकाकरण स्थल जहां बनावल गेल बा, टीकाकरण से देखें बच्चा के बीमारी से सुरक्षा मिलेला और समुदाय में भी संक्रमण के खतरा घटेला।
1: बिल्कुल सही कहत हुआ भैया। और देखा इसने में हमन के बात बतकई तो होत रही, हमन के हमेशा ये ध्यान देवे के चाहिए कि टीका लगवा के बचपन के बचाई, स्वस्थ बच्चा मजबूत परिवार और स्वस्थ समाज बनाए। और देखा बात बतकई तो होते रही, लेकिन आज के पंचायती में अधिवक्ता अभिनाथ यादव भैया जुटल बाड़न और बाल अधिकार और अभिभावक का जिम्मेदारी होवे के चाहिए, ये विषय पर भोला भैया से बात बतकई करत हूँ। तो हम तो कथिक बिना देर के लिए सुनल जाए।
2: जैसा कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धना धर्मः ततः सुखम। यदि सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहले विद्या ग्रहण करने के लिए जुड़ना पड़ेगा। विद्या विनय देता है, विनय से पात्रता मिलती है और पात्रता से धन मिलती है, तब धर्म का भी ज्ञान मिलता है। और जो है कि इसका मूल प्रथम सीढ़ी शिक्षा है। अब जो शिक्षा लेने देने की बात है तो प्राथमिक शिक्षा जो पहले 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा दे करके बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करने का जो काम किया जाता था, अब भी किया जाता है, इत्यादि तमाम बातें, उनको हर तरह के जो है कि बाल श्रम करने पर भी निषेध इत्यादि बात बताई जाती है, तमाम बातें हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत सिविल कोर्ट दुधी के अधिवक्ता अभिनाथ यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है बच्चों के शिक्षा दीक्षा बाल अधिकार के बारे में, आपसे बातचीत होगी। अभिनाथ यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बाल अधिकार की बात चलती है
3: जी,
2: तो आप किस प्रकार देखते हैं बाल अधिकार को, क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए सभी अभिभावक को?
3: जी, बच्चों को सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार
2: जी,
3: समानता का अधिकार
2: जी,
3: ये सब देना चाहिए। और सबसे बच्चे अगर शिक्षा ही अगर हम नहीं देंगे तो बाकी किसी अधिकार को पाने के लिए वो नहीं उसके काबिल बन पाएंगे। अगर हम शिक्षा दे लेते हैं तो अपना सब अधिकार वो बच्चा प्राप्त कर लेगा।
2: जी जी, अच्छा, इसमें तो जो बच्चों को शिक्षा ना दे करके बाल श्रम करवाते हैं तमाम तरह के, कहीं कहीं धरपकड़ के भी बात आती है, तो हमको लगता है कि कानूनी अपराध भी है ये।
3: हाँ,
2: शिक्षा ना दिलाना
3: बिल्कुल अपराध है। और ये आपके ये ड्राफ्ट आउट जो बच्चे होते थे
2: जी,
3: जिनका उम्र 6 से 14 हुआ करता था
2: जी,
3: उस तरह के बच्चों को आज भी सरकार जो है ड्राफ्ट आउट बच्चों की सूची अपना एकत्र करवाती है एनजीओ लगा करके, और उन लोगों का सूची एकत्र करने के बाद पहले तो उनको फिर बुला करके मुक्त कराते हैं, इसके बाद उनको शिक्षा से जुड़वाते हैं।
2: जी जी जी, अब जहाँ बाल अपराध की बात की जाए और बाल अधिकार की बात की जाए, तो कहीं अपराध तो घर से शुरू हो जाती है
3: जी। अब जब हम बच्चा पढ़ने की उम्र में अगर उसको हम पढ़ाई नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उस लायक अगर उसको हम सुविधा नहीं दे पाएंगे तो काम तो किसी के यहाँ करने जाने ही लगेगा।
2: क्योंकि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं तो रेडियो के माध्यम से लगभग बहुत श्रोता लोग सुन रहे हैं
3: जी,
2: और लगभग हर अभिभावक के बच्चे हैं
3: जी,
2: कहीं कहीं कभी ये कह करके कि जो एक भाई हम गरीब आदमी हैं और हमारे यहाँ साधन सुविधा नहीं है, 2-4 बकरी रख लिए हैं और हमारा बच्चा बकरी दावेगा तो हम खेती करेंगे, ऐसा भी लोगों को विचार है
3: जी। वो विचार जरूर है, लेकिन हम जिस तरह के अभिभावकों का सोच है, जिस तरह से यहाँ के जो अभिभावक का बच्चों के प्रति पढ़ाई के प्रति रुझान है, वो बिल्कुल हमारा आदिवासी बेल्ट कहलाता है
2: जी।
3: और इसमें क्या होता है कि लोग उस पैसे को अपने नशा में अपने किसी अन्य खर्चे में कर लेंगे, उसके लिए उनके पास पैसा हो जाएगा
2: जी,
3: लेकिन
2: जी,
3: बच्चों
2: जी,
3: के पढ़ाने के लिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके प्रति उनका मुख्य उद्देश्य से नहीं जानकारी हो पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा पढ़ लेगा तब हमारा इसका पढ़ने के बाद इनका इसका क्या लाभ मिलेगा।
2: जबकि ये सरकार की तमाम योजनाएं हैं, निःशुल्क शिक्षा वाली भी बात चल रही है,
3: पूरा
2: यहाँ की ड्रेस पहनने के लिए भी पैसा दिया जा
3: रहा
2: है,
3: ड्रेस के लिए पैसा दिया जा रहा है, कापी किताब मिल रहा है।
2: हाँ,
3: और अब मानक
2: भोजन भी दिया जा रहा है,
3: भोजन भी दिया जा रहा है, मानक के अनुसार बच्चों का शिक्षक भी अब विद्यालयों में लगभग उपलब्ध कराई जा रही है
2: जी जी जी जी। अच्छा, शिक्षा कितना आवश्यक समझ में आता है मानव जीवन में?
3: मानव जीवन में देखिए, शिक्षा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है
2: जी,
3: हम किसी भी अधिकार को पाने के लिए
2: हाँ।
3: शिक्षित हमको होना जरूरी है
2: जी।
3: जब हम शिक्षित रहेंगे तभी अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसको हम पी करके ही
2: दहाड़ सकते
4: हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे सभी क्षेत्र में शिक्षा

0: थोड़े से बच्चों को पढ़ाने में अपना श्रम कर लेंगे तो बच्चा पूरे लाइफ के लिए श्रम करने से बच जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे अभिभावक
1: जी
0: ऐसे बच्चों का चिन्हित करके बिल्कुल मुख्य शिक्षा के मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए।
1: अच्छा, जो शिक्षित रहेगा वही सम्मान भी कर सकता है
0: जी।
1: प्रत्येक अभिभावक का यही सोच रहता है कि अभी मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और आगे चल करके जब हमारा अवस्था ढल जाएगा
0: जी,
1: तो ऐसे समय पे वो हमारा साथ दे।
0: साथ दे बिल्कुल।
1: तो तभी उस साथ देने का बात सोच पाएगा कि जो है कि शिक्षित रहेगा।
0: शिक्षित रहेगा।
1: और नहीं तो ये कहेगा भाई माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे
0: जब वही अपने युवा रहेगा। जब बच्चा वही चीज देखा रहेगा कि हमारे गार्जियन कल के दिन हमसे खेती करा, हमसे कहीं बाल श्रम कराए, कहीं मजदूरी कराए, और उनके साथ के कुछ लड़के पढ़ के अच्छे जगह पर चले जाएंगे, तो वह बात उसके दिमाग में हमेशा टिच बना रहेगा कि शायद उनके उसी तरह से हम पढ़े होते तो हम भी वहाँ चले जाते।
1: जी जी जी।
0: लोग इस बात का कंपेयर करते हैं,
1: कंपेयर करते हैं, और बाद में जो है कि
0: गार्जियन के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ते हैं कि आप लोग उस समय अगर थोड़ा ध्यान दिए होते तो हम भी उस फलाने जैसा हुए होते।
1: मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो मान लीजिए है ही
0: जी
1: अभिभावक के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा दंड तो ये भी है कि आप बचपन में बच्चे को शिक्षित नहीं किए तो वृद्धावस्था में आपको ही
0: भाई जब हम जो चीज लगाएंगे उसी का फल खाने की अपेक्षा करें, जब हम उस लायक उसको योग्य बनाए ही नहीं कल उससे अपेक्षा क्या करेंगे।
1: अच्छा, ये कभी कभार अभिभावक भी बहुत प्रताड़ित करते हैं बच्चों को, डांटना मारना तो है ही है, मारतक भी देते हैं
0: बच्चे
1: और कहते हैं कि तुमने अमुक काम नहीं किया। कैसे देखते हैं आप? मैंने
0: बच्चे मारने से नहीं सुधार सकते। बच्चों को किसी बात को प्यार से जब आप कहेंगे तो कुछ मैंने कुछ ज्यादा देर तक उसका असर बना होता है। अगर आप मार दिए तो बच्चे के ऊपर और उस बात का, क्योंकि जब बच्चा समझने लगता है तो उसको अंदर से उस समय तकलीफ होगा, वो भी आपके ऊपर प्रयास करेगा कि आज चलिए आप हमको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो कल आप भी कभी वैसा उम्र के होंगे तो आपको भी। यही वजह है कि आज समाज में जो है इस तरह कुर्तियां फैल रही हैं कि हर जगह सुनने को मिलता है कि उसके बच्चे ऐसे किए, उनके बच्चे ऐसे किए। तो हम चाहेंगे कि बच्चे को प्यार से कहा जाए, जो प्यार की भाषा है वो कभी मार में नहीं,
1: मार में नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से अब चूंकि इसमें भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं ही, आप लोग कभी कभी चर्चा करते रहते हैं कि मारना पीटना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
0: कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
1: और कभी कभार तो कई जगह लोग
0: हम अगर पेड़ लगा रहे हैं तो उसको बिना परमिशन के नहीं काट सकते
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो तो मेरा बेटा है, उसको उसको क्या हम मार सकते हैं? ऐसा तो है नहीं। अरे पैदा किए तो उसका उस लायक योग्य बनाने के लिए हम उसका निर्वहन करें अपने कर्तव्य का। माता पिता का जो कर्तव्य होता है उस बच्चे का क्या हो सकता है उसके अनुसार हमको पेश होना चाहिए।
1: पेश होना चाहिए। अब चूंकि है, अब वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है शिक्षा दीक्षा में, रहन सहन में, बोली चाली में, आस पास पड़ोस के लोग जैसा वर्ताव करेंगे, अगर नशापति का सेवन कर रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे उसमें ढलता है।
0: बिल्कुल, उसका प्रभाव बच्चों पर होता है।
1: जी जी जी।
0: हमारे यहाँ विशेष रूप से हम देखते हैं कि बच्चों से ही कहेंगे कि सिगरेट ले आओ, गुटखा ले आओ, या जो शराब पीने वाले हैं कि उसके यहाँ से एक बोतल लेकर के आओ। तो जब बच्चा लाएगा तो कभी प्रयास तो करेगा कि आखिर कैसा लगता है, थोड़ा हम भी ट्राई कर लें, इसका चेक कर लें कैसा लगता है। उसी तरह से कभी कभी उसके नशे का आदि बच्चे भी पकड़ लेते हैं।
1: जी जी। तो यानी कि ये भी अगर प्रलोभन दे रहे हैं तो भी
0: बिल्कुल
1: मतलब
0: गलत
1: एक
0: है।
1: तरह से गलत ही है और ये भी कानूनी प्रक्रिया का शिकार मतलब हो सकते हैं लोग। इससे भी बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चे तो अज्ञानतावश काम करता है, लापरवाही करता है। हालांकि उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि कुछ भी कहा जा रहा है तो हमारे लिए कहा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल अबोध बच्चे हैं तो वो इसको समझने से मतलब नहीं है।
0: जब आप नहीं समझ पा रहे तो बच्चे से कितना अपेक्षा करेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बच्चा अगर जो है कि कैसा आपको लगता है कि ये जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, तो ये कहीं अमीर और गरीब काफी इसमें कुछ है क्या? कि अमीर है तो वो अच्छा पढ़ सकता है, पढ़ा सकता
0: नहीं,
1: है।
0: बच्चे होनहार बच्चे जो हैं, पहले जिनके पास साधन सुविधा नहीं थे, इन्हीं विद्यालयों से, इसी प्राइमरी पाठशालाओं से, इसी सरकारी जगहों से बच्चे पढ़ के निकले हुए हैं। और बशर्ते आज के समय में जिस तरह से ट्रेंड टीचर हैं उसके हिसाब से लोग खुद उस पर, बच्चों शिक्षक भी नहीं प्रयास कर पा रहे हैं बच्चों को धराव से, अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से बच्चे गार्जियन भी प्राइवेट विद्यालयों में भेजने के लिए विवश हो जा रहे हैं। अगर इस तरह का अगर शिक्षा अगर वास्तव में हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: बच्चों
1: जी।
0: पर बहुत शिक्षा में

0: अच्छा नहीं है,
1: हाँ
0: बशर्ते कि हम प्राइवेट विद्यालय में भेजें। अच्छे होनहार बच्चे निकलने के लिए यहाँ भी शिक्षकों से इस सवाल बता दीजिए, पूछने लगेंगे या किसी चीज़ का वो करेंगे तो शिक्षक ना चाहते हुए भी उसको पढ़ाएंगे उस लायक।
1: बिल्कुल, स्वाध्याय जो है कि बहुत बड़ी चीज़ है,
0: जी
1: और आज तो आपके कानून में जो है कि शिक्षक के प्रति भी शिकंजा है कि
0: हाँ
1: बच्चे को रूखी आवाज़ में डांट नहीं सकते
0: नहीं,
1: और उनको मारना तो बहुत दूर की बात
0: बहुत दूर की
1: है,
0: बात है।
1: तो ये भी सब है, उनके निदानात्मक बातचीत के माध्यम से उनको सही दिशा में ले जाया जा सकता है। तो चूंकि रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं और आप एक अधिवक्ता भी हैं, आप कानून की भी बहुत बात जानते हैं, और लेकिन बाल अधिकार के जहाँ जहाँ शोषण हो रहा है
0: जी
1: उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है,
0: जी बिल्कुल हो
1: तो
0: सकता
1: क्या
0: है।
1: कहना चाहेंगे लोगों को शिक्षा दीक्षा के बारे में, बाल अधिकार के बारे में?
0: हम तो लोगों को यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा के प्रति हर गार्जियन अपना कर्तव्य निर्वहन करे, बच्चों को जिस परिवेश में है उसके अनुसार अपना, अगर आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो भी बच्चे को अगर आप कहेंगे डेली कि बैठो और पढ़ो, और आप कहेंगे आप सामने बैठे रहेंगे तो वह बच्चा पढ़ेगा तो भी डर से, आप नहीं जान रहे लेकिन उस बच्चे को लगेगा कि पिताजी जान रहे हैं, पापा जान रहे हैं, बाबा जान रहे हैं, तो वह याद करेगा, पढ़ेगा और जानकारी उसका बढ़ेगा और अच्छा जगह जा
1: अच्छा,
0: सकता
1: ये
0: है।
1: जो घर पे आपसी विवाद जो होती है
0: जी
1: अगल बगल से, भाई भाई में, माता पिता में, या अन्य घरेलू झगड़े हैं,
0: जी
1: उस पे भी बच्चों का कुछ कुप्रभाव
0: बहुत
1: पड़ता है?
0: बहुत प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा।
0: जिस तरह से बच्चों के साथ आप पेश आएंगे, वो बच्चे जिस तरह से हम आप उस उम्र में अपने भाइयों से कर रहे हैं, पिताजी से कर रहे हैं, वह बच्चा कहीं अलग ट्रेनिंग तो लेने जा नहीं रहा है,
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: हमारे साथ फिर प्रयोग करेगा, अपने भाइयों के साथ प्रयोग करेगा, अपने अगल बगल के पड़ोसियों के साथ उसका प्रयोग करेगा,
1: जी जी जी
0: तो इसका प्रभाव बिल्कुल समाज में
1: तो
0: अलग
1: जो भी
0: पड़ेगा।
1: मैंने बाल अधिकार है उनके साथ जो है कि अच्छे से पेश आए, उनको पढ़ाने का काम करें, उनसे काम कोई श्रम ना कराएं 18 साल के अवस्था के नीचे तक,
0: जी
1: तो ये सारे चीज़ उसके अंतर्गत आते हैं। इसके खिलाफ अगर कोई आदमी जाता है तो कानूनी दायरे में आता है,
0: जी
1: तो निश्चित रूप से आपसे बातचीत होकर के ये लगा कि प्रत्येक अभिभावक को सजग हो करके जो आपके मन में चल भी रहा है उसको भी बल्कि दबा करके और फिर बच्चे के साथ अच्छा पेश आना चाहिए
0: जी
1: ताकि
0: बिल्कुल
1: उसके मन मस्तिष्क में किसी भी अप्रिय घटना ना बैठे।
0: जी
1: तो इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे आप, बातचीत हो रही थी। अभिनाथ यादव जी, आप पेशे से अधिवक्ता हैं और इतने अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नंदू भैया,
0: अजलू भैया,
2: देखा भाई कितना अच्छा जानकारी हम सुनत रह लीजा कि बाल अधिकार और अभिभावक ए पर जनबा अभिनाथ यादव भैया जो की अधिवक्ता रहन, उनसे अपन भोला भैया बात बात कही करत रहन। और ऐसने में देखे थे कि अपन जो खेती किसानी से करके अपन किसान भाई भी अपने पंचायती से जुड़ गए हुए, तो बारिश का असर अपने किसान भैया लोग के खातिर कैसन बा?
0: देखें भैया, अपन बारिश बारिश की तो जहाँ तक आप बात करते हो, तो मौसम के बदलाव के देखते किसान भैया लोग अब देखें चयन में खेती के तरीका में भी जरूरी बदलाव करत हो, और जल निकासी के बेहतर इंतजाम और बरखा के पानी के संरक्षण से भी नुकसान कम करल जा सकला। किसान देखें किसान भैया मौसम के जानकारी पर ध्यान हमेशा बनौले रहें, और सिंचाई और फसल के सुरक्षा योजना भी अपन बन सके, और सही समय पर सावधानी या कृषि विशेषज्ञ के सलाह से देखें खेती के जोखिम कम करल जा
2: करल
0: सकेला।
2: जा सकेला। और देखा बारिश की जो कमी कमी हो उसे बुआई में जो देरी या फसल में बढ़वार में रुकावट आ रहा बा या उत्पादन में कमी हो सकेला, तो ए तरह से जो मौसम के अनिश्चितता बा वो किसानन खातिर के जो उनका लागत बा मेहनत और आमदनी तीनों पर असर डाल सकेला, और अधिक बारिश से खेत में माटी के कटाव और पोषक तत्व के नुकसान भी हो सकेला। कम बारिश की स्थिति में देखा किसान भैया लोग जिन बार सिंचाई खातिर अधिक खर्च करे के पड़ सकेला, तो इसे थोड़ा सा बचाव करे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखें हम तो यह कहब कि मेहनत और सही योजना बाजार के समझ से कृषि कृषि सह व्यवसाय आमदनी बढ़ावे के मजबूत साधन बन सकला, और पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन किसान खातिर अतिरिक्त आय के एक अच्छा माध्यम बन सकला, और कम
2: बिल्कुल।
0: जगह में उचित व्यवस्था के साथ अंडा या मांस उत्पादन के काम शुरू कैल जा सकेला। मुर्गी के देखें संतुलन आहार, साफ पानी, स्वच्छ शेड और बीमारी से बचाव के विशेष ध्यान देवे के चाहिए अतिरिक्त आय के साधन में।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखा बाजार की मांग, लागत और बिक्री के जानकारी लेके जनवा छोट से छोट स्तर पर भी एक शुरुआत करल जा सकेला और ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हमन खातिर हो सकेला। और देखा हमन का बात बात कही तो होते लेकिन अपने पंचायती में एक और जानकारी वाली बात बा सफलता की कहानी, तो नोटिलिया

0: कोटा चोपन से प्रगतिशील उद्यमी जयसिंह पटेल भैया आज जुटल वर्ण और अपने सफलता की कहानी बतावत हुआ कि पोल्ट्री फार्मिंग बना आय का साधन, ये कैसे हो सकेला, ये विषय पर भोला भैया से बात बात की हो रहा बा। तो हम तो कहते कि बिना देर के लिए जानकारी सुनल जाए।
1: अब सुनल जाए। प्रताप, कृषि से व्यवसाय के क्रम में मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि तमाम ऐसे युक्ति अपनाए जाते हैं जिससे खेती के साथ साथ अन्य भी मुनाफा हो और इनके बीट से कृषि उत्पादन भी अच्छा हो। इसके लिए व्यक्ति युक्ति अपनाता है कि हम मुर्गी पालन भी करें, बकरी पालन और मत्स्य पालन इत्यादि। आज मुर्गी फार्म पे हैं और हमारी मुलाकात श्री जयसिंह पटेल जी से हो रही है। आपका सोनभद्र जनपद अंतर्गत चौपन ब्लॉक के नौटोलिया कोटा में मुर्गी फार्म है, क्या कुछ आपका अनुभव है, इससे क्या कुछ लाभ हो सकता है अगर प्रत्येक व्यक्ति करें तो, इसके बारे में बातचीत होगी। जयसिंह पटेल जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये कब से आप मुर्गी फार्म कर रहे हैं?
2: मुर्गी फार्म 2006 से कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो कैसे मन में जगह आती है?
2: मन में जब ऐसे ही देखे कि मतलब नौकरी तो बहुत मिल नहीं रही है, तो कुछ अपना व्यापार किया जाए।
1: पढ़ाई लिखाई की?
2: हाँ, पढ़ाई लिखाई बीए किए हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम करते हुए अपना पोल्ट्री फार्म का काम हम कर रहे थे और धीरे धीरे 150 बच्चा ले जाके पालना स्टार्ट किए।
1: अच्छा।
2: 2026 तक, मतलब इस समय मेरे पास 200,000 की पोल्ट्री फार्म है।
1: जी जी।
2: जैसे मैं कोटा के नोटोलिया में है, रावटसंज के कैथी में है।
1: अच्छा।
2: रावटसंज के दुरावल कला में भी है और घुरावल ब्लॉक के अंतर्गत तेंदुआ गाँव है, वहाँ पे है।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो वही घुरावल ब्लॉक के कन्हारी में भी है, सिरसाई में है, मतलब कई जगहों पे कम से कम 8-9 पॉइंट है मेरा।
1: अच्छा, बड़े मतलब बृहद रूप में कर रहे हैं। तो ये क्या इसका अनुभव है, मतलब कैसा आमदनी कैसी है?
2: नहीं ठीक है, 10 रुपया प्रति किलो का वो है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, कभी कम कभी ज्यादा, कुल मिला के 10 रुपया प्रति किलो का प्रॉफिट है।
1: कौन प्रजाति के पालन करते हैं?
2: देखिए, मेरे यहाँ है अमन हैचरी का ट्रिपल एफ जी है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: कलर बर्ड।
1: हाँ।
2: उसका तैयारी बहुत ही अच्छा है, 32 दिन में 1 kg आ जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, जिससे हम लोग प्रॉफिट मतलब उसमें ठीक ठाक है, अच्छा खासा है।
1: खानगी में क्या जाता है?
2: खानगी में वो फीड आता है, ब्रायलर और क्रायलर फीड आता है बन के, जो कि 38 रुपया किलो से लेके 42 रुपया किलो तक है। 38 रुपया में क्रायलर फीड है जो बड़ा होने पे दिया जाता है और 42 रुपये में जो चूजों को दिया जाता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। उनके देख रेख में क्या सावधानी बरतनी पड़ती है?
2: देख रेख में देखिए, जैसे बाहरी कोई आदमी अंदर ना जाए और जो पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं वही अंदर जाएं, उसको देख रेख वहीं करें।
1: अच्छा अच्छा।
2: बाहरी लोग अगर जाएंगे तो उससे वायरस बीमारी का वो होता है,
1: संक्रमित
2: हो जाते हैं, इसके कारण दिक्कत होता है।
1: जी जी।
2: इसलिए हम लोग उसको मतलब के बाउंड्री करा के अच्छी तरह से किसी को वहाँ पे जाने से वंचित करते हैं, मतलब नहीं जाने देते हैं।
1: मतलब हवादार इनका,
2: हवादार खुला फार्म हो, मतलब हवा आदान प्रदान हो, इस टाइप से करते हैं।
1: अच्छा अच्छा। मतलब इसमें सबसे बड़ी ध्यान यही देनी होती है। हाँ। इनके शत्रु कौन कौन से ऐसे हैं?
2: जैसे मैं इनके शत्रु वही, जैसे कि मान लीजिए अगर जानवर से बचाना होता है, मतलब जानवर ना घुसे, कोई भी जैसे जानवर हमला कर नुकसान हो जाएगा, उससे दिक्कत होगा, ताकि आवाज़ जरा से भी आवाज़ होने से सब इकट्ठा हो जाएंगे, एक दूसरे पे चढ़ के मर जाएंगे।
1: हाँ
2: हाँ हाँ। ये
1: सबसे
2: इसीलिए
1: जाली किए हैं।
2: हाँ, जाली किए हैं और दूर दूर तक जैसे कि मतलब के अगल बगल कुत्ता उत्ता भी ना पहुँचे, इसीलिए मतलब घेराव किए हैं। हाँ, जैसे वो भोगते हैं तो इसकी वजह से इकट्ठा हो जाते हैं, बर्ड तो मरने का चांस रहता है, गज के एक
1: दूसरे पर
2: चढ़ जाएंगे। तो
1: बिल्कुल
2: यही सब मतलब ये सब,
1: क्योंकि रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, संभवतः उनके भी मन में जगह की
2: नहीं
1: भी करना चाहिए, तो ये शुरुआत कैसे करें लोग?
2: नहीं, शुरुआत लेकिन वो करें, ले जाएं चिक्स, मतलब चिक्स और फीड अवेलेबल हो जाएगा, जगह जगह दुकानें हैं वहाँ पे चिक्स और उसका दवा, फीडर, बर्ड, हर कुछ उपलब्ध हो जाएगा उनको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ले जाएँ वहाँ से ले जा के अपना वो करें।
1: बीमारी कौन लगता है इनमें?
2: बीमारी इसमें गैम्बोरो का एक आता है तो उसका वैक्सीन आता है।
1: अच्छा।
2: 12 दिन पे हम लोग उसको लगवा देते हैं। जैसे चिक्स आता है तो चिक्स भी मेरे पास अवेलेबल है, तो चिक्स को हम करते क्या है, जैसे जब अंडे से चूजा निकलता है जिस दिन, उसी दिन वैक्सीन लगवा देते हैं रानी खेत का।
1: अच्छा।
2: और इसके बाद गैम्बोरो जो है, गैम्बोरो का थोड़े से गैम्बोरो का वो रहता है, तो उसके लिए वैक्सीन आता है 12वें दिन हम उसको वैक्सीन करवा देते हैं, इसलिए मतलब बीमारी का चांस, उसका मेडिसिन है दवा, कोई दिक्कत बहुत नहीं होता है, साफ सफाई रखना पड़ता है।
1: ये सब बहुत संख्या में रहते हैं तो इंजेक्शन किसे लगता है?
2: नहीं, इंजेक्शन नहीं लगता है, वो ड्राप आता है।
1: ड्राप लगता है, मतलब जो पानी के साथ दे दिया
2: जाता है। पानी के साथ दे दिया जाता है और एक एक बूंद आँख में डाला भी जाता है, उसको पार्टीशन करके एक एक बूंद डालते हैं।
1: अच्छा,
2: इससे मतलब वो सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बीमारी का कोई वो चांस नहीं रहता।
1: ये चीज़ें हैं, मतलब ध्यान देना पड़ता है।
2: हाँ,
1: कि संक्रमण से बचाएं और जो भी रोग व्याधि हो तो उसका करेंगे।
2: हाँ,
1: और खान पान के लिए वो अपना जितना आहार उनका होता है उतना ही लेते हैं?
2: हाँ,
1: खाते
2: नहीं,
1: जाते हैं?
2: नहीं, वो इससे नहीं खाते रहते हैं, जितना उनका डोज है उतना खा के फिर बैठ जाएंगे। हाँ, फिर इसके बाद जब उनको भूख लगेगी तब फिर वो खाएंगे, उस हिसाब से खाते रहते हैं।
1: फिलहाल
2: में किसानों के लिए अच्छा है, इससे वो अपना किसानी के साथ साथ में पोल्ट्री फार्म कर सकते हैं बेहतर तरीके से।
1: बीट होता है उसको क्या करते हैं?
2: हाँ, उसको खेत में डलवा देते हैं, अच्छा फसल होता है, खाद का मात्रा कम देता पड़ता है। हाँ, फायदेमंद बहुत है, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा।
1: अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं।
2: हाँ,
1: ये कैसे के जी बिक जाता है?
2: देखिए, जो कलर बर्ड है ट्रिपल एफ जी, इस समय 110 रुपया से लेकर मान चलिए 125-30 तक जाता है, रेट घटता बढ़ता रहता है।
1: हाँ, हाँ,
2: और जो ब्रायलर है, जो मेरा मतलब सफ़ेद वाला ब्रायलर है
1: जी,
2: वो मान चलिए कि आपका मोटी मोटा 70 रुपये से लेके 110 रुपये तक, मतलब रेट कम बेसी होता रहता है, जैसा मार्केट में डिमांड रहे उस हिसाब से रेट बढ़ता घटता रहता है। मगर आप 12 महीने का रेशियो देखेंगे तो आपका नुकसान नहीं है, फायदा है, 10 रुपया किलो की मार्जिन है।
1: तो जैसे यहाँ पर आप किए हैं तो इसका थोक बिक्री हो जाता है?
2: हाँ हाँ, सब वो गाड़ी आती हैं बाहर, जैसे बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वो सब गाड़ी आती हैं, तो इसके बाद वो मतलब सब माल चला जाता है बाहर।
1: हाँ,
2: कोई दिक्कत नहीं होता है
1: जी जी।
2: हाँ, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बिक जाता है, हर जगह हर मार्केट में तो डिमांड है।
1: तो जैसे छोटे किसान लोग करें तो फिर?
2: हाँ, उनके लिए भी फायदा है, अच्छा है। हाँ, उसका
1: उनका भी बिक जाएगा।
2: हाँ हाँ, बिक जाएगा, मार्केट में गाड़ियाँ हैं, उठ जाएगा
1: जी जी जी।
2: जैसे देखिए, कभी भी जब कोई काम करता नहीं है तो वहाँ पे सेल होता नहीं, उस हिसाब से जब काम करने लगेगा तो सेल मतलब खरीदने वाले वहाँ पहुँच जाएंगे लेने के लिए।
1: चूँकि आज जैविक खाद का भी बहुत डिमांड हो गया है।
2: हाँ,
1: कि जो रासायनिक खाद है वो नुकसान कर रहा है जमीन को भी, फसल को भी।
2: हाँ,
1: तो ये इनका खाद मतलब अच्छा काम कर रहा है?
2: अच्छा काम है, कहे इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है खाद इनका, और इससे मतलब के डाल देने पे खेत में फसल भी अच्छी हो रही है बढ़िया
1: जी जी।
2: हम लोग तो अपने खेत में पूरा डलवाते हैं अच्छी तरह से,
1: बिल्कुल
2: नहीं है।
1: तो सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि आप एक पढ़े लिखे होकर के, और अभी भी लगभग पढ़ाई चली रहा है कैसा?
2: नहीं, पढ़ाई तो मान लीजिए हो गया है, हम अब पूरी तरह से एकदम पोल्ट्री फार्म में अपने लग गए
1: लग
2: हैं। और अच्छी तरह से कर रहे हैं, 2 लाख मेरे पास बर्ड है इस समय, मान लीजिए सावन को जैसे कम बर्ड है, मगर मान लीजिए कि जैसे सावन के बाद पूरा 2 लाख बर्ड मतलब पूरा पल जाएगा, हर जगह 8-9 पॉइंट जितनी है सब जगह पड़ जाएगा, और कुल मिलाकर ठीक है, अच्छा है,
1: मतलब इनकम से संतुष्ट हैं?
2: एकदम एकदम, बहुत ही अच्छा है
1: जी जी।
2: 10 रुपया किलो की मार्जिन है इसमें।
1: अच्छा, अपने चूंकि घर पर भी रहना है?
2: हाँ हाँ, घर पर रहते हुए अपना खेती करते हुए।
1: हाँ हाँ,
2: अपना काम मतलब पोल्ट्री फार्म का,
1: पराधीन आदमी नहीं है, स्वाधीन है। तो निश्चित रूप से कहा भी गया है, कर बढ़िया वाला आपने छोड़ी बिरानिया, जेकरे पास है हुनर शौकत मदद किया। निश्चित रूप से हुनरमंद व्यक्ति अगर है तो, चूंकि बहुत किसान भाई लोग सुन भी रहे हैं, चलते चलाते क्या कुछ उन लोगों को कहना चाहेंगे ये मुर्गी फार्म के बारे में?
2: कहना ही चाहेंगे कि किसान भाई करें, अच्छा है, मतलब किसानी से जुड़ा हुआ है पोल्ट्री फार्म, मतलब किसानी बना लें और अच्छा है, बिक्री के लिए कोई दिक्कत नहीं हुए
1: जी।
2: हाँ, इसलिए करें।
1: तो श्रोताओं, देखें, ये सोनभद्र जनपद अंतर्गत 54 ब्लॉक के नोटोलिया कोटा में है, और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही थी जय सिंह पटेल जी से। और आप बहुत ही बृहद रूप में यहाँ तो किए ही हैं, लेकिन पूरे जनपद का अपना रेशियो आपने बताया कि जो है कि कहाँ कहाँ पर हमारे हैं, और जो संपर्क करना चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। अपना संपर्क सूत्र बता दें ज़रा।
2: 9621
1: जी
2: 6339 03।
1: एक बार फिर दोहरा दें,
2: 9621 6339 03।
1: तो श्रोताओं, देखें, ये नंबर था जय सिंह पटेल जी का, और आप चाहें तो संपर्क करके आपसे चूजे भी उपलब्ध कर सकते हैं, और अच्छा पालन करके अपना जो नगदी बेच करके तो फ़ायदा ले ही लेंगे, और साथ साथ जो है कि इनके बीट से आप रासायनिक खाद की जगह पर जैव खाद के रूप में प्रयोग करके अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, पौष्टिक अनाज उत्पादन कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी के लिए जय सिंह पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अचलो भैया।
0: हाँ
3: भैया वो देखा ये अपन रहें भोला भैया, और जो उन बस सफलता के कहानी में पोल्ट्री फार्म कैसे उनकर आय के साधन बनल माध्यम जय सिंह पटेल भैया के ये अपन कहानी सुनौले आ बतौले भी सही
0: कैसे
3: तरीके
0: सफल बनी है।
3: बिल्कुल।
0: तो देखो भैया हर वार्ता का हर भेंट वार्ता का विशेषज्ञ भैया लोग का कहे का मतलब खाली एक को निचोड़ रहेला कि कैसे जनबा आय का साधन दो पैसा बढ़ावल जाए ताकि जनबा आवे आवे कभी कभी जैसे मौसम की बेरुखी की वजह से जनबा आर्थिक संकट उठावे पड़ेला किसान भैया लोगन के। तो कुल मिलाकर के यह कि कैसे अपने खेती में लागत कम करल जाए उनमें अच्छा उत्पादन लिया हो जाए और वो उत्पादन इतना गुणवत्ता युक्त रहे कि बाजार में ले जाकर क्योंकि अच्छा भाव मिल सके ये बदे जनबा ये बहुत विशेष रहे।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और जवन विविधीकरण के बात होला चलो भैया तो देखें अपन खेती बारी के साथ साथ ये जवन विविधीकरण बा ये अतिरिक्त जवन साधन बा उसे देख बतौले न कि कई तरह के एकर उपयोग कई कई किसान भैया तो ऐसन कर रहे कि भैया तालाब जहाँ बा भैया तालाब तालाब के ऊपर जवन बा पोल्ट्री फार्म कर दे वाले और नीचे भैया मछली पालन कर दे वाले।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और उनकर बीट जवन बा वो सीधा सीधा चारा बन जाला मछली के और एक तरफ मछली मिल जाला दूसरे तरफ उनका वो हो जाला
0: आय का साधन।
3: बिल्कुल। तो कहीं न कहीं कई तरह के खेती में भी ओकर बीट के इस्तेमाल करके अपन जवन बा लागत कम करत हो।
0: तो देखो आय का एगो और साधन रख ले हुआ अपने गठरी में तो गठरी तो नहीं खोला तो नहीं बाँचा देखा था
3: बाबा बाहर नजर भैया एकदम दांत देवे के कोई कहीं न कहीं न कहीं अपन बाबूलाल मौर भैया भी हमेशा
0: एकदम
3: बिल्कुल पाती के माध्यम से जानकारी के माध्यम से जुड़ल रहल है और आज भी उनकर पाती हमरे हाथ में बा।
0: तो बिना देर के लिए बाँच दे
3: तो देखे रावर्सगंज मंडी के बा और कुंतल में बा लाल वाला आलू 1200 से 1300 सफेद वाला आलू 1000 से 1100 और प्याज रहल 4000 से 4200 रुपया टमाटर रहल 2200 से 2500 रुपया और बोड़ा रहल भी 2500 से 3000 आ कोहड़ा रहल 1800 से 2000 और लंबा वाला बैगन रहल 1500 से 1800 और गोल वाला बैगन रहल 3000 से 3200।
0: अच्छा।
3: परवल 6000 से 6500 लौकी 1200 से 1400 और करेला रहल अपन 2500 से 3000 और भिंडी रहल 1000 से 1200 नेनुआ 2000 से 2200 और मूली रहल बिया 2500 से 2800 हरा मिर्च रहल 2500 से 2600 लहसुन रहल आपके जोन बा 14000 15000 आ धनिया रहल आपके 10000 से 12000।
0: अच्छा।
3: आ पालक रहल 1800 से 2000 अदरक रहल 7000 से 8000 और सूरन रहल भी 5000 से 6000 और चौराई 1000 से 1200 और भैया खीरा रहल 2200 से 2800 रुपया और मकई रहल भी 1800 से 2000 रुपया और फूल गोभी जो सैकड़ा में बा भैया रहल अपन 2000 से 2500 और पत्ता वाला भी रहल 2000 से 2500 और नींबू के भैया रहल रेट अपन 250 से 300 रुपया
0: प्रति सैकड़ा। तो इत रहल रावड़गंज मंडी का बाजार भाव। बाबूलाल मौर भैया के धन्यवाद दिया जाए साथे साथ जय सिंह पटेल भैया के और अभिनाथ यादव भैया के भी धन्यवाद दिहल बहुत जरूरी बा। तो कैसे मनफेर करावत हुआ धन्यवाद खातिर
3: तो देखें अपन मीना कौशल उनके संघाती लोग हैं और इस मौसम में जो उनबा कजरी सुनावत हैं सुनल जाए
0: तो मौका भी बा दस्तूर भी बा तो तनिको न हो देर हो जाएगो मनफेर।

0: अचलो भैया।
1: हाँ नंदू भैया,
0: देखा
1: देखा।
0: भैया ये तब पुरान जौन बा झूला जब पड़त रहे ना सावन में भैया, जब फटेंगा उड़े ना अब कजरी गवाए भैया, तो लगे भैया कि सावन जौन बा
1: आ गइल बा।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: देखा, बिल्कुल सही कलन। लेकिन सावन के समय में एक और चीज जो बड़ा सतर्क वाला चीज हो वाला
0: भैया,
1: देखा जैसे एगो कहीं बचवा के जन बा कोनो अनजान घर में अगर छोड़ दा तो या तो चिड़चिड़ा हो जाए या डरी या कुछ ऐसा काम करे कि वो घरे में रहे वाला और सदस्य जो रहलन वो उनके परेशानी हो सकेला। तो ऐसे ही देखा एकदम पानी के वजह से जोन बा हर जगह का छेदा उदा सब बंद हो गया बा, और मेन जो जीव जंतु रहलन चाहे वो सांप हो चाहे बिच्छू हो वो निकल निकल के कहूँ दूसरे घरे में जात हुए, और जात हुए तो भैया दूसरे की परेशानी होत बा।
0: तो भैया ऐसे सतर्क रहे और सुरक्षित रहे, कहीं न कहीं भैया जोन बा अपन लाठी डंडा टार्च हमेशा
1: हमेशा
0: देखें,
1: साथे रखें।
0: घर में जहाँ भी अगर अभी आपके
1: अंधियारापन
0: होके या आप आवे जाए के उनकर सुराग होके भैया ओके बंद कर दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: बिल्कुल।
0: मतलब सुरक्षित आप रहें और सही स्थिति में रहें, परेशानी में न पड़े।
1: तो ये तो कैसे जीवन बचावे के बाद बा ये आप बतावत हुए। ऐसे ही देखा भैया नेत्रहीन जो होलन वो नेत्रहीन लोगन के भी जनबा नेत्रदान अगर उनके आंख मिल जाए तो कितना बढ़िया पुण्य का काम होला।
0: बिल्कुल
1: ऐसा तो ही देखा काली का चर्चा का हो उकरे बारे में बतावे।
0: तो भैया देखें नेत्रदान है जीवन का महादान। डॉक्टर जो ने एस के गुप्ता हो नेत्र चिकित्सक से अपन भोला भैया के बातचीत बा कल के जोन बा जानकारी क्रम में सुनल जाये।
1: सुनल जाये
0: आप भैया हो अचलू। देखे अब कहीं न कहीं भैया कर जब नेत्र के बात कैला तो भैया कह जला न की जब आदमी भैया अंतिम सांस ले वाला तक कहीं न कहीं भैया ओकर समाप्ति हो जाला, लेकिन भैया अगर नेत्र दान हो जाए दूसरे के आंख में देखे तो भैया वो न रहले पर भी जीवित रह जाला।
1: बिल्कुल दुनिया के वो
0: नजर से देखे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल। देखल है।
1: तो हमार तो देखा था आंख जन बा अपने घड़ी पे जात बा तो पंचायती समेटे का इशारा भी करत बा, तो हम तो कहते कि चल जाए
0: तो चल जाए अगली पंचायती में फिर हुई बातचीत। तो सब पंचन
1: के राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं सईद कादरी का लिखा गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में। आवाज़ KK की है और फिल्म है गैंगस्टर।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम को फिल्म लकी में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम अदनान सामी ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज में फिल्म जहर से। बोल सईद कादरी के हैं और तर्ज बनाई है रूप कुमार राठौर ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारी आज के कलाकार हैं मीना कौशल और साथी। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले इनके स्वर में सोहर।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण कार्यक्रम है लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीत कार्यक्रम में आज के ही हमारे कलाकार हैं मीना कौशल और साथी। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मीना कौशल और साथी का गाया पूर्वी।

श्रोताओ, लोकगीत कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे मीना कौशल और साथियों के स्वर में विदेशिया गीत। इसी के साथ हमारा लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
6: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
5: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
6: कहाँ से पता चलेगा?
5: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें।
6: ओ।
5: बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।

0: दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ, क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, कहा मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में 879 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। श्री योगी ने कहा कि इसी फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
1: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
2: मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर एक विकसित भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता साक्षरता क्लब और ईसीआई के नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पारंपरिक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को मतदाता जागरूकता और चुनावी शिक्षा के लिए एक मजबूत मंच में बदलने के लिए एक सशक्त और सक्रिय पहल की है। श्री कुमार ने कहा कि आज के संवाद ने इस बात की पुष्टि की है कि छात्रों को चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता की अच्छी समझ है और वे लोकतंत्र में भाग लेने पर गर्व महसूस करते हैं।
3: 20 जिलों से आए हुए प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और छात्राओं के साथ संवाद से इस बात की आश्वासना मिलती है कि हमारे छात्र और छात्राओं को चुनावी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान भी है और उसकी पारदर्शिता और उसमें उनकी सहभागिता के ऊपर उनको नाज भी। भारत के चुनाव संविधान, कानून और निर्देशों के तहत ही होते हैं। इसी पारदर्शी प्रक्रिया को छात्रों ने स्वयं देखा।
0: लखनऊ के क्षेत्रीय सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ, अमेठी समेत 20 जनपदों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार्स कॉलेज में देश

0: की लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ संवाद किया। ईवीएम को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीनें इंटरनेट या किसी भी वायरलेस तकनीक से नहीं जुड़ी होती हैं। उन्होंने छात्रों को फेक न्यूज से सतर्क रहने की सलाह दी। श्री कुमार ने छात्रों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित ये क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल लखनऊ और आसपास के जनपदों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में आज 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलीला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। बाराबंकी स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए उरई, जालौन, झांसी, बिठूर, कानपुर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उधर वाराणसी में तड़के मंगला आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को काशी हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। श्री काशीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों भक्त रविवार रात से ही गंगा स्नान कर कतार में लग गए, जबकि कांवरिये बोलबम का जयघोष करते बाबा के दरबार की ओर बढ़ते रहे। भीड़ को देखते हुए धाम में जिग जग बैरिकेडिंग, छाया, पेयजल, मेडिकल कैंप और खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई थी। रात्रि में भोग सिंगार आरती से पूर्व बाबा की रजत चल प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान मानकर भव्य सिंगार किया जाएगा। आरती के बाद श्रद्धालु बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जनपद ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

102.7 FM पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। अब आइए सुनते हैं मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं आर डी वर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। फिल्म है चांदनी।

0: श्रोताओं, सब इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी आप सुन रहे थे शिव हरि के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में फिल्म थी चांदनी।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में फिल्म थी बेताब। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण, कार्यक्रम है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म करण अर्जुन से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में बोल इंदिवर के हैं और तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

हाँ मैंने भी प्यार किया है। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने। श्रोताओं सबरस कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। FM 102.7 पर पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें।

श्रोताओं, इसी गजल के साथ हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो वक्त की रोटी का गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।
1: ऐसी थी वैसी थी

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म रूप तेरा मस्ताना में। बोल आनंद बख्शी के थे और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के उमरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोता, कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा कलाम जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये प्यारी सी गजल। इसके साथ ही हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे, उसके तुरंत बाद रात्रि 9 बजे सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। कृपया क्षणिक प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
1: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री

0: अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जल भराव, घरों को नुकसान और नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी

0: समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Beijing for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
2: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, the Russian President offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. The Russian President credited Prime Minister Narendra Modi for the growing partnership between New Delhi and Moscow. He said, External Affairs Minister's visit underscores the level of relations that has been established between Russia and India for decades. He said the two countries are cooperating in practically all areas, reflecting the broad and expanding nature of their bilateral partnership. Earlier in the day, External Affairs Minister, along with Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov, co-chaired a meeting of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow.
3: The India-Russia partnership has consistently demonstrated resilience and adaptability. Even amidst a complex international landscape, our engagement has continued to deepen, reflecting the mutual interest and confidence that define our bilateral partnership.
2: Dr. Jayashankar reached Moscow yesterday on a two-day visit to Russia. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a two-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representatives talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Qian said, Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. More in this report.
4: The ties between New Delhi and Beijing came under severe strain after the 2020 Galwan Valley clash and the prolonged military standoff in eastern Ladakh. But both sides have since taken steps to stabilize relations. Mr. Doval and Mr. Wang are the designated special representatives for the boundary talks mechanism, which was established in 2003 to comprehensively address the boundary dispute of the India-China border spanning over 3,400 kilometers. Ahead of the special representative's talks, External Affairs Minister S. Jayashankar had on Saturday reiterated that peace and tranquility along the border areas are prerequisite for good relations with China. Nishit Kumar, News Desk.
2: India has stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav said this in Ulaanbaatar, Mongolia today. He was addressing the ministerial dialogue on innovative financial mechanisms for healthy land and drought resilience during the 17th session of the Conference of Parties COP17 to the UN Convention to Combat Desertification. Mr. Yadav said land restoration is not a cost but an investment in food, water, biodiversity, livelihoods and long-term resilience. The minister highlighted India's blended green finance framework, which enables financing for climate change adaptation, sustainable land use, forestry and agriculture, afforestation and biodiversity conservation. Concluding his address, the minister reaffirmed India's commitment to sharing its experience, safeguards, institutional arrangements, lessons learned and areas requiring course correction. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India will amend existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised by companies seeking to set up manufacturing operations in the country. Speaking during a program in Tokyo, Mr. Goyal said he met two major corporations earlier in the day. one planning to establish their

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आया सावन झूम के का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के थे और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मंजूर सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के आखिर में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म रामपुर का लक्ष्मण में। इसी गीत के साथ हमारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज करते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे गीत से, जिसे आवाज दी है आशा भोसले के साथ किशोर कुमार ने। फिल्म है जवानी दीवानी।

जाबाज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत सपना मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। कार्यक्रम में है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। आवाजें हैं लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की। फिल्म है एक दूजे के लिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। फिल्म थी पुलिस पब्लिक। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण FM 102.7 पर। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म घायल से लता मंगेशकर और पंकज उधास की आवाजों में। रचना अनजान की है और तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी।

ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। संगीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं बल्कि भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली वह खूबसूरत भाषा है जिसे हर दिल अपनी तरह से समझता है। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस विशेष फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके ईमेल द्वारा भेजे गए पसंदीदा फिल्मी गीत। जिसमें कहीं कोमल अनुभूति है, कहीं दोस्ती की मिठास है, कहीं रिश्तों की आत्मीयता है, तो कहीं बीते दिनों की सुनहरी यादें हैं। तो आइए सुरों और एहसासों से सजी इस खूबसूरत संगीत के सफर का आगाज करते हैं। और श्रोताओं, आज के इस सफर में आपके साथ है आपके रेडियो साथी आराधना श्रीवास्तव। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और पढ़ते हैं आज का पहला ईमेल। श्रोताओं, हमारे म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में सबसे पहला फरमाइशी ईमेल हमने लिया है ग्राम टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी जी का। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म कल की आवाज के गीत की। गीत के बोल हैं, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। गीत में अपनी आवाज दी है आशा भोसले के साथ कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। तो श्रोताओं, इसी गीत को गगनदीप थांदी के साथ सुनना चाहा है तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी और उनके परिवार के सभी सदस्यगण। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, संगीत का सिलसिला जारी है और अब बारी है अगली फरमाइश की। ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र चांसौलिया जी का। श्रोताओं, सत्येंद्र जी ने अपनी पसंद का जिम्मा हम पर छोड़ा है और चाहा है हम अपनी पसंद का कोई भी गीत उनको सुनवाएं। और श्रोताओं, ये इच्छा सिर्फ सत्येंद्र जी की ही नहीं बल्कि उनके साथ आदर्श, सार्थक और अलौकिक चांसौलिया जी की भी है, तो हम इनकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं अपनी पसंद का ये गीत जो फिल्म खुद्दार से है, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। तो आइए सुनते हैं इस बरसात के मौसम में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय है एक ऐसी फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करने का जिसमें उत्साह है, उमंग है और जीवन को पूरी गर्मजोशी के साथ जीने का संदेश है। श्रोताओं, ये फरमाइशी ईमेल हमें भेजा है ग्राम शोभापुर मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश से दिग्दर्शन गौर जी ने। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म मृत्युदाता के गीत की, इसे अपनी आवाज दी है दलेर मेहंदी के साथ सुदेश भोसले ने। गीत के बोल हैं नाना नाना नारे। श्रोतो, हमें उम्मीद है इस गीत की ऊर्जा और मधुरता आपके मन में नई तरंग जगा देगी। तो अपनी धुन पर झूमते हुए, अपनी मुस्कान को बरकरार रखते हुए सुनिए शानदार फरमाइशी गीत। अरे रुकिए श्रोतो, हम आपको बता दें इस गीत की फरमाइश दिग्दर्शन गौर जी के साथ कविता गौर जी की भी है। तो लीजिए सुनिए इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। कार्यक्रम में ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। श्रोताओं, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी akashwaniobra@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में एक और सुरीली फरमाइश शामिल हो रही है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा शाह जी की। हमारे श्रोता बसंत कुमार सिन्हा शाह जी ने ईमेल के माध्यम से फरमाइश की है फिल्म अलबेला के देवता माना और पूजा तेरी तस्वीर।

श्रोताओं, आप बढ़ते हैं अपनी अगली ईमेल फरमाइश की ओर, जो आई है आर्यनगर कोहका भिलाई से। ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल। आपने फरमाइश की है फिल्म मोहब्बत के गीत की। गीत के बोल हैं नैना ये बरसे मिलने को तरसे। श्रोताओं, गीत में अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। बोल इंदिवर के हैं और तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने। श्रोताओं, कुछ गीत वाकई हमारी जिंदगी की कहानी के साथ कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं कि वर्षों बाद भी उनकी धुन सुनते ही कोई चेहरा, कोई पुराना पल आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। और श्रोताओं, इस गीत को उत्तम सिंह जंघेल के साथ सुनना चाहा है मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल जी ने। साथ ही श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश की है धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल ने। तो चलिए श्रोताओं, यादों की इस मीठी खुशबू के साथ सुनिए फिल्म मोहब्बत का ये सदाबहार गीत।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण FM 102.7 पर। कार्यक्रम है ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। अगर आप भी अपने पसंद के गीत हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर हमें ईमेल भेज सकते हैं। श्रोताओं, गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब बारी है अगली ईमेल फरमाइश की। यह फरमाइश आई है संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव जी की। आपके साथ ही इस गीत की फरमाइश की है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का गीत चलो सजना जहां तक घटा चले। जी हां, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, रिश्तों की खूबसूरती भी कुछ ऐसी होती है, दूरी चाहे कितनी भी हो एक प्यारा सा गीत दिलों को करीब ले आता है। जी हाँ, यही तो जादू है हमारे इन पुराने गीतों में। तो आइए इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये यादगार गीत।

श्रोता, फरमाइशों का यह सिलसिला जितना सुरीला है उतना ही आत्मीय भी है। अब एक और ईमेल फरमाइश हमारे कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में शामिल हो रही है, जिसे भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी ने। आपने फरमाइश की है ये दिल तुम बिन लगता नहीं गीत की फिल्म इज्जत से। गीत में अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। बोल साहिल लुधियानवी के हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत को टीडी मल्होत्रा जी के साथ सुनना चाहा है। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और मिट्टा बजाज जी ने। श्रोताओं, कभी एक संदेश, कभी एक गीत और कभी बस कुछ शब्द एक दिल की बात कहने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो आइए इस प्यारे समर्पण को संगीत के हवाले करते हुए सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, अब एक ऐसी फरमाइश जिसमें छिपी है किसी खास याद की खुशबू। जी हाँ, ये ईमेल फरमाइश हमें भेजा है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा जी ने। श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरा मणि वर्मा जी के साथ, इस गीत की फरमाइश की है पानस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यगण ने। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। गीत के बोल हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। उदित नारायण की आवाज में आपने ये गीत सुनना चाहा है। श्रोताओं, कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, कुछ मन को सुकून देते हैं और कुछ सीधे मीठी यादों के उस कोने में ले जाते हैं जहाँ हमारी अनमोल यादें सुरक्षित रहती हैं। तो हीरा मणि वर्मा जी की इस प्यारी सी फरमाइश को स्वीकार करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में अपने अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरों की ये महफिल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अंतिम फरमाइश के रूप में हमारे म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में अगला ईमेल हमें भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी जी ने। कीर्तनपुरी गोस्वामी जी ने हमारे रेडियो के बारे में एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही है। इन्होंने लिखा है, माई रेडियो माई लाइफ। कीर्तनपुरी गोस्वामी जी को हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेरों धन्यवाद। अब चलिए आपकी फरमाइश की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने किस गाने की फरमाइश की है। श्रोताओं, कीर्तनपुरी गोस्वामी जी के साथ लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी ने फरमाइश की है फिल्म काला पत्थर से गीत सुनने की, जिसे गाया है लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार जी ने। श्रोताओं, कहते हैं ना, अगर जिंदगी में एक ऐसा साथी मिल जाए जो हमारी भावनाओं को, हमारे एहसासों को बिन कहे समझ सके, तो जिंदगी की राहें आसान हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोतों, आज के इस खूबसूरत संगीत सफर में आपने हमारे साथ अपनी पसंद, अपनी यादों और अपने एहसास साझा किए। ईमेल के माध्यम से भेजी गई आपकी फरमाइशें हमारे कार्यक्रम को एक अलग ही आत्मीयता प्रदान करती हैं। अगर आप भी अपनी पसंद के गाने हमारे म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी akashwaniobra@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे। कृपया क्षणिक प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। दो दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।